0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: आपली पसंत आमची आवड, मनस्वी संगीत, शेती, महिला आरोग्य, विशेष कार्यक्रमांचा नजराणा, आपला रेडिओ तेरणा। ऐकत रहा, आनंदी रहा। रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं, आपला आवाज। क्रिस्टल क्लिअर आवाजासाठी डाउनलोड करा आमचा ऍप प्ले स्टोर वरून। टाइप करा रेडिओ तेरणा 90.4। रेडिओ तेरणा आता रेडिओ गार्डन वरही उपलब्ध, तसेच radio.coeusmanabad.ac.in वेबसाइट टाकूनही आपण रेडिओ तेरणा ऐकू शकता। ऐकत रहा रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं, आपला आवाज। ऐकत रहा, आनंदी रहा।
3: नमस्कार, आपण ऐकत आहात रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं, आपला आवाज। मित्रांनो, आपण तेरणीची प्रेरणा या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जाणून घेत असतो अशा सर्व विद्यार्थ्यांचा जीवन प्रवास, ज्यांनी तेरणा अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून आपले शिक्षण पूर्ण केलेलं असतं आणि त्यानंतर जीवनाचा प्रवास करत असताना आयुष्याच्या एका उंचीवर अशा उंचीवर जाऊन पोहोचतात की त्यांचा हा जीवन प्रवास आपल्या सर्वांसाठी प्रेरणा असतो आणि आपण त्याच्यातून अनेक असे मुद्दे घेतो, पॉईंट्स घेतो, ज्याच्या माध्यमातून

0: आपल्याला सुद्धा पुढे जीवनामध्ये असं मार्गक्रमण करत असताना आपल्या संघर्षामध्ये कमी येऊ शकते आणि अशा पद्धतीचा आपण हा कार्यक्रम तैरणीची प्रेरणा या नावाखाली चालवतो आणि अनेक अल्युमिनियमचे जे तैरणा अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून शिक्षण घेऊन गेलेले आहेत अशा विद्यार्थ्यांची जीवनगाथा आपण या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून ऐकलेली आहे. आज हे रेडिओ तैरणासाठी अतिशय खूप सुंदर आणि खूप चांगला दिवस आहे आजचा खरं तर, कारण आज रेडिओ तैरणाच्या स्टुडिओमध्ये खास व्हिजिट केलेले 1996 ते 2000 या कालावधीमध्ये शिक्षण घेतलेले 2000 साली पासआउट झालेले अनेक विद्यार्थी या ठिकाणी रेडिओ तैरणाला व्हिजिट देण्यासाठी आलेले आहेत आणि आज आपण त्यांच्याशी चर्चा करणार आहोत, त्यांचाही जीवन प्रवास जाणून घेणार आहोत. आपल्या रेडिओ तैरणाच्या स्टुडिओमध्ये इथे माझ्यासमवेत आहेत श्री मिहिर महापात्राजी. ते मूळतः ओडिसा इथून राहणारे आहेत, सध्या पुणे येथे कार्यरत आहेत सिमेंट्स कंपनीमध्ये. त्यांचं कम्प्युटर सायन्समध्ये शिक्षण झालेलं आहे. त्यांच्यासमवेत आहेत श्री सौरभ श्रीवास्तवजी. ते मूळतः गोरखपूर येथील आहेत उत्तर प्रदेश. ते पण सध्या पुणे येथे बिल केअर रिसर्च या कंपनीमध्ये कार्यरत आहेत आणि ते प्रोडक्शनमध्ये त्यांचं शिक्षण पूर्ण झालेलं आहे. माझ्यासमवेत आहेत श्री संजयजी पांडे. ते मूळतः लखनौ उत्तर प्रदेश येथून आहेत आणि आता सध्या म्हणजे गेल्या 22 वर्षापासून लंडन इथे स्थायिक आहेत आणि ते BNP अशा एका कंपनीमध्ये कार्यरत आहेत, त्याही विषयी आपण जाणून घेणार आहोत. आणि आपल्यासोबत आहेत डॉक्टर संजयजी वायकर. ते असोसिएट प्रोफेसर आहेत MGM कॉलेज मुंबई इथे आणि बेसिकली ते अहमदनगरमधून आहेत आणि त्यांचं पण कम्प्युटर सायन्समध्ये शिक्षण झालेलं आहे. मी खरं तर आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो, आम्हाला खूप आनंद होतोय रेडिओ तैरणामध्ये आपलं स्वागत करताना.
1: थँक्यू.
0: तर सर्वप्रथम तर मी मिहिर महापात्राजी आपसे मैं स्टार्ट करना चाहूंगा की आणि ऐकणारे श्रोते हो, आता हे सर्वजण जे आहेत ते हिंदीमध्ये बोलणार आहेत, फक्त केवळ श्री डॉक्टर संजयजी वायकर जे आहेत ते अहमदनगरचे आहेत, ते मराठीमध्ये आपल्याला सर्वांशी संवाद साधतील. बट मिहिर महापात्राजी, आप लगभग 2000 में पास आउट हो चुके हो, अभी 2023 का लास्ट मंथ स्टार्ट है, तो अभी ये 22-23 सालों के बाद आप जब कैंपस में आ रहे, आप सभी के लिए क्वेश्चन है, तो आपका मतलब मेमोरीज कैसे चेरिश कर रही है और आपको पुराने जमाने का जो भी है वो कैसे यादें अभी आ रही है?
1: क्या फर्स्ट टाइम जब हम लैंड किए उस्मानाबाद में तो हम देखना चाहते थे कि
0: आप उस्मानाबाद का आप धाराशिव
1: ओके तो धाराशिव पे जब हमने लैंड किया फर्स्ट टाइम तो हम पहले देख रहे थे कि क्या क्या चेंजेस हुआ है सिटी में. तो अपने पुराने यादें के हिसाब से हम देख रहे थे कि कौन से शॉप पे हम जाते थे, कौन से रेस्टोरेंट पे हम जाते थे खाना खाने और कौन से विजिटिंग प्लेसेस था जहां पे अभी चेंजेस बहुत सारे देखे, बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं वहां पे. एंड वो देख के बहुत अच्छा लगा क्योंकि बिकॉज सब जगह पे अभी सिटी इज ग्रोइंग, सो यहाँ पे भी हमें धाराशिव में भी देखने को मिला, सो दैट इज वेरी नाइस थिंग हैपेंड. एंड कॉलेज में जब हम आए हम देखे थे कम्प्लीटली सीन चेंज्ड हियर. सो उस टाइम जो हमारे फेवरेट हॉस्टल्स जो हम उसको टाइटैनिक बोलते थे, बिकॉज उस टाइम हम बाहर से जब हम लाइट लगाते रात में तो हम देखते थे कि पूरा कम्प्लीटली वो टाइटैनिक लुक दिखता था हमें. तो वही हम बात करके के आ रहे थे. एंड आने के बाद हमें देखा कि यहाँ पे कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत सारे चेंजेस देखने को मिला. एंड कॉलेज का फ्रंट तो एज इट इज है एंड अंदर इनसाइड जो है वो ऐसा था जो हम यहाँ पे अपना फायरवेल एंड नो ऑल द प्रोग्राम्स कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पे कंडक्ट किए थे एंड वो मेमोरी हमें यहाँ आके फिर से याद आ गई.
0: सौरभ जी, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा जब, या आप पहली बार ही आ रहे हो 23 इयर्स में?
2: मैं पहली बार आ रहा हूँ आफ्टर डिग्री कम्प्लीशन के बाद. सो जैसे इधर हम लोग उतरे उसके बाद से वो मेरे को 1997 याद आया जब मैं इधर एडमिशन के लिए फर्स्ट टाइम आया था.
0: अच्छा.
2: और उस दिन के बाद से ये 23 इयर्स पूरा जो है ना दिमाग में फ्लैशबैक चलने लगा कि वो फर्स्ट डे जब हम यहाँ उतरे थे लाइक उस टाइम पे अभी तो बहुत डेवलपमेंट हो गया, उस टाइम पे तो लाइक आने के लिए भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स थे. उस्मानाबाद जाओ फिर उस्मानाबाद से इधर आओ देन ये सब, अभी तो काफी डेवलप हो गया सब कुछ उस टाइम पे. फिर एक मतलब जब स्टार्टिंग में आए थे तब लगा कि अरे यार यहाँ 4 साल कैसे निकालेंगे, अपने को 4 साल अभी इधर पढ़ना है. बट धीरे धीरे धीरे जब हम लोग सबसे मिलना, फिर सीनियर्स जूनियर्स, उसके बाद वो ऐसा बॉन्डिंग हो गया ना कि आज 22 इयर्स के बाद हम लोग मिल रहे हैं. हम चारों लोग 22 इयर्स के बाद मिल रहे हैं.
0: अच्छा.
2: बट वो एक पल भी ऐसा लगा नहीं कि हम 22 इयर्स के बाद मिल रहे हैं. वो बॉन्डिंग और वो जो डेवलप हुआ ना हॉस्टल में और वो जो लर्निंग्स हम लोग को मिली दैट इज फिनोमिनल.
0: अच्छा.
2: मतलब हम लोगों ने वहां से बहुत कुछ सीखा जब हम लोग हॉस्टल में रहे, यहाँ से पढ़ाई की बहुत कुछ सीखने को मिला हम लोगों. और चेंजेस तो लाइक वन कैन नॉट इमेजिन.
0: ओके,
2: इट इज लाइक दैट. वरना हम लोग तो यही देख रहे थे यार, हम तो ऐसे जाते थे, इधर तो ऐसे अप डाउन होता था, घाटी होती थी, घाटी से हम लोग इधर जाते थे, इधर से उधर जाते थे. सो इट इज मतलब कम्प्लीटली चेंज.
0: अच्छा, अभी भी मुझे आपके चेहरों से दिखाई दे रहा है कि आप फ्लैशबैक में ही हो.
2: हाँ, वो भूलता ही नहीं है. वो भूलता ही नहीं है.
0: संजय जी, आप तो 22 इयर्स से लंदन में हो, तो आपके लिए तो बहुत ज्यादा ये इसकी जो मेमोरीज है वो ज्यादा आपको टीज कर रही होंगी.
3: मैं सच बताऊंगा, बाकी जैसे इन दोनों लोगों ने कहा, नॉस्टैल्जिया तो है ही है, और चेंजेस जो हुए बहुत बेहतरी के और अच्छे के लिए. जैसे कि सबसे बड़ा चेंज है, उस्मानाबाद में ट्रेन स्टेशन हो गया है, तो हम कम्यूट कर सकते हैं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ है वो सब. लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि मैं उस्मानाबाद से कभी अलग हुआ ही नहीं.
0: अच्छा.
3: लास्ट 22-23 सालों में मैं आज भी बहुत लोगों के कॉन्टेक्ट में हूँ.
0: अच्छा.
3: और रेगुलरली टच में रहता हूँ. यहाँ से आने से पहले भी मैंने मानेसर से बात करी थी. लेकिन बड़ा अच्छा लगता है. और एक इंसिडेंट बताऊंगा, लंदन वाटरलू स्टेशन पे मैं खड़ा था, जहां पे मैं कभी उम्मीद भी नहीं कर सकता कि कोई मिलेगा. एक बंदे ने आके मुझसे पूछा, आप संजय पांडे हो?
0: अच्छा.
3: तो मैंने कहा, मैंने आपको पहचाना नहीं. फिर उन्होंने बोला, उस्मानाबाद. हमने अगली दो ट्रेन छोड़ दी और हम वहां पे बैठ के बातचीत करी, और बहुत ही अच्छा लगा. और ये सब एक्सपीरियंस जो है इतने क्लोज है हार्ट के, इसको बयान नहीं किया जा सकता.
0: बिल्कुल.
3: रही बात कॉलेज की, तो हमने 4 गोल्डन ईयर्स यहाँ बिताए. यहाँ पे जो बारिश का मौसम, उसमें गरम गरम पराठे खाना किरण में इसके.
0: अच्छा.
3: वो कहीं नसीब नहीं हुआ इसके बाद.
0: अच्छा.
3: दुनिया घूम ली, लेकिन मजा जो उस्मानाबाद का है, स्विट्जरलैंड फेल है उस्मानाबाद के.
0: इतनी बड़ी बात कही आपने. संजय जी पांडे, इनसे भी और बात करना चाहेंगे, लेकिन आता आपल्या सोबत आहे डॉक्टर संजय जी वायकर, ते असोसिएट प्रोफेसर आहेत. आपण पण खरं तर आता हे सगळे लखनौ उत्तर प्रदेश आणि 2000 गोल्डन इयर आहे, तसा तर म्हणजे त्याच्या अगोदरचा जो आहे तेरणा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचा, कारण पूर्ण भारतातले लोक जे आहेत ते आपल्याला या तेरणा इंजिनियरिंग कॉलेजच्या कॅम्पसमध्ये दिसून येत होते. तर तुमचा एक्सपिरियन्स कसा आहे तो एक सांगाव.
4: माझा एक्सपिरियन्स खूपच छान आहे, आणि ह्या सर्वांनी जसं शेअर केलं, जे माझे बॅचमेट्स आहेत आणि खूप छान मित्र आहेत, एवढ्या वर्षापासून आम्ही टचमध्ये आहोत. आणि उस्मानाबादचं लाईफ दॅट इज म्हणजे त्याचं तुम्ही वर्णन नाही करू शकत शब्दामध्ये. असं एक ते एक आहे, अवर्णनीय क्षण होते ते 4 वर्ष, फारच सुंदर होते. त्यातून खूप काही शिकायला मिळालं, खूप काही लोकांना जोडायला मिळालं. आणि जसं आता तुम्ही बोललात की प्रत्येक जण आपापल्या क्षेत्रात खूपच छान प्रकारे ते उत्तम कामगिरी करतायत, आणि तसंच मी एक माझं क्षेत्र हे एज्युकेशन फील्डमध्ये निवडलं. मी मुंबईमध्ये स्थायिक होतो अगोदरपासून, आणि त्याप्रमाणे मी एज्युकेशन फील्डमध्ये ग्रो करत आहे आता.
0: अच्छा.
4: आणि चेंजेस सांगायचे झाले तर सर्वांनी वर्णन केलं, त्याच्याही पुढे जाऊन मी सांगेल की खूप म्हणजे आत्ताचा ज्या टाईमला जे रिक्वायर्ड आहे, ऍज पर टाईम जे रिक्वायर्ड आहे त्याच्याही पुढे जाऊन ते खूप चांगली कामगिरी करत आहे आपलं कॉलेज.
0: अच्छा.
4: असं मी बोलू शकेल.
0: बरं, वायकर सर, मी आता परत यांच्याकडे येतो, पण तुमच्यापासून जरा थोडीशी परत एकदा सुरुवात करतो की आपण तर महाराष्ट्रातून म्हणजे नगर म्हणजे लगतच्या जिल्ह्यातून आलेला होतात, तुम्हाला तसाही हा एरिया माहीत होता, पण त्या काळामध्ये पाहत असाल की अनेक राज्यातले जे स्टुडंट आहेत ते या ठिकाणी, मग तुमचं कम्युनिकेशन यांच्यासोबत मैत्री होताना कशी झाली, आणि म्हणजे त्यावेळेसचा जो पिरियड होता रॅगिंगचा असा बराचसा काही असायचा, मग तुम्हाला भीती म्हणून होती का नेमकं काय होतं?
4: नाही नाही, बिलकुल नाही. आम्ही जेव्हा फर्स्ट म्हणजे मी जसा डायरेक्ट सेकंड इयरला आलेलो, परंतु हे जसे फर्स्ट इयर पासून आलेले, पण यांनी जे ग्रीट केलं आम्हाला, आणि जे मी आम्ही पहिल्या भेटीमध्येच जे आम्हाला आपुलकी वाटली ती कुठेच मिळाली नाही. म्हणजे असं कधीच वाटलं नाही की समजा हे आपण म्हणजे आम्हालाही नाही वाटलं, त्यांनाही नाही वाटलं, कारण ते त्यांनी तसंच ट्रीट केलं आणि आम्ही तसंच ट्रीट केलं. आणि दॅट वॉज की असं म्हणजे कुठेच बोलू शकत नाही की आपण रॅगिंगचा पिरियड होता असं काही नाही, कुठे भीती नव्हती, आणि खूप छान वातावरण झालं, आणि आमची मैत्री कधी झाली आणि ती आता म्हणजे आता जसं मी म्हणलो की ती खोद कधी संपणार नाही अशी मैत्री.
0: अच्छा. संजय जी, जैसे मैं आपके तरफ थोड़ा सा आना चाहूंगा फिर से एक बार, कि जैसे इन्होंने या शायद इन्होंने कहा था कि टाइटैनिक के जैसा लुक दिखता है हॉस्टल का, तो उस वक्त शायद इतना ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं था, यहाँ का एरिया भी थोड़ा सा आउटसाइड था सिटी से, तो आपने फर्स्ट आपका इम्प्रेशन क्या हो गया था जैसे ही आपने यहाँ पे कॉलेज पे लैंड किया?
3: जब मैं कॉलेज में लैंड किया, हम आ रहे थे, तो मैंने रिक्वेस्ट किया कंडक्टर से, बस रोक दो भाई हम उतर जाएं, तो उसने बस रोकी नहीं.
0: अच्छा.
3: तो ऑल द वे लेके गए हमें सिटी तक. वहाँ पे करीब आधा घंटा 45 मिनट लगा हमें टमटम मिलने में,
0: हाँ।
3: जिसके थ्रू हम आए, लेकिन बारिश हो रही थी तो मौसम बहुत अच्छा था,
0: हाँ।
3: और देखने में बड़ा सुंदर लग रहा था। यहाँ पर हम उतरे तब ये सब जो रोडें अभी बनी हुई है सब कुछ नहीं था,
0: ओके।
3: तो काफी पानी भरा हुआ था, गीला सा माहौल था, लेकिन कॉलेज बड़ा सुंदर दिख रहा था, ये सब बिल्डिंग्स भी नहीं थी, तो थोड़ा हार्डशिप तो लगा था लेकिन डिसअपॉइंटमेंट नहीं था क्योंकि वेदर बड़ा अच्छा था और इतने सारे लोग दिख रहे थे और मन में बड़ा एक एक्साइटमेंट भी था कि इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, और उसमें कॉलेजेस बड़े कम हुआ करते थे और स्पेशली हम लोग जो है काफी दूर से आ रहे थे, जैसे मैं खुद लखनऊ से आ रहा था, तो इट वाज जस्ट लाइक यू नो द स्टार्ट ऑफ अ न्यू चैप्टर इन द लाइफ, सो ऑल पॉजिटिविटीज थी। और हाँ, थोड़े इनकन्वीनियंस थे, वो तो हर जगह रहते हैं, समय बदल गया आज इतना, इसलिए हमें सब मॉडकॉन्स दिख रहे हैं, बट यू नो वी हैड अ गुड टाइम, सो इट वाज अ गुड स्टार्ट, मैं तो ये बोलूंगा।
0: अच्छा, तो सौरभ जी और मिहिर जी, जैसे कि इन्होंने कहा कि मैं इसलिए ये क्वेश्चन करना चाहता था कि जैसे आप दिल्ली के आजू बाजू में रहते हो
3: जी,
0: तो वहाँ का माहौल, एक सिटी का एक लाइफस्टाइल की भी बात है, सब कुछ है, तो हर एक का ख्वाब रहता है कि कुछ अलग कॉलेज में आना या कुछ पढ़ाई करना, तो फिर जैसे ही आपने यहाँ पे आया आपका एकेडमिक स्टार्ट हो गया होगा, तो कैसा रहा फिर आपका जो पहला साल है दूसरा साल है, कैसा रहा पढ़ाई के हिसाब से भी और यहाँ के माहौल के हिसाब से भी?
2: सो पहला साल लाइक जब हम लोग यहाँ आए, लकली पांडे जी की बस नहीं रुकी थी, बट मेरी बस ने मेरे को उतार दिया था
0: अच्छा
2: तो मेरे को इधर उतार दिया था, बट सी बाद में ये सब चीजें सेकेंडरी हो गई, इन्वायरमेंट कैसा है, ये इनकन्वीनियंस है, ये प्रॉब्लम है, बाद में वो जो रिलेशन हुआ ना वो फिर सब कुछ वही हो गया,
0: okay.
2: फिर उसके साथ उन सारी चीजों में भी मजा आने लगा, मतलब फिर ऐसा लगता नहीं था कि कुछ ऐसा इनकन्वीनियंस है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, हम उसमें ही बहुत सारा इंजॉय करते रहते थे अपना। फिर एजुकेशन लाइक क्लासेज स्टार्ट हुए फर्स्ट ईयर, लाइक फर्स्ट ईयर में आए तो देन अभी इट इज ऑल न्यू, फिर बहुत सारे सब्जेक्ट, फिर ऐसा हम लोग आए तो M1 M2 इज वेरी हार्ड, ड्राइंग इंजीनियरिंग ड्राइंग विच इज वेरी हार्ड, ऐसा हम लोग को ऐसा बताते थे, फिर धीरे धीरे वो स्टार्ट, या वंस वी पिक अप देन ऑटोमेटिकली इट फ्लोज स्मूथली।
0: अच्छा, तो आप जैसे तो सौरभ जी जो है वो शायद प्रोडक्शन से थे, आप बाकी सब कंप्यूटर साइंस से थे, तो शायद आपकी दोस्ती जो है पहले बन चुकी होगी, बाद में शायद ये आ गए होंगे, ऐसा कुछ हो गया था मिहिर जी?
1: ये हमारे एक साल जूनियर थे, एक साल जूनियर थे, बट हम लोग संजय भी सेकेंड ईयर में ज्वाइन किए थे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ।
1: बट संजय पांडे और मैं एक ही साथ ज्वाइन किए थे।
0: ओके।
1: बट मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब मैं यहाँ पे आया तो फर्स्ट टाइम मेरे अंकल के साथ मैं आया था, तो यहाँ पे कॉलेज देख के गए थे, फिर घर जाके फिर वापस में अकेला आया, एंड हम यहाँ पे तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, बट आई वॉज एक्साइटेड वेरी मच टू मीट पीपल।
0: डायरेक्टली ओडिशा से आए?
1: ओडिशा से आया मैं डायरेक्ट, तो हाँ। फिर मैं वहाँ पे सोलापुर से हम बस थ्रू वहाँ पे सिद्धार्थ लॉज था, तो वहाँ पे हम मैं रुका, एक रूम लिया और मैं डायरेक्टली हॉस्टल आया, यहाँ पे एक ओल्ड हॉस्टल और ये न्यू हॉस्टल, तो ओल्ड हॉस्टल में आने के बाद मेरे को बहुत सारे अपने बैच के बहुत सारे फ्रेंड्स मिले, तो वहीं से जर्नी शुरू हुआ, तो उधर फिर कॉन्टेक्ट बने, फिर उसके बाद हम हॉस्टल के लिए रूम एलोकेशन, तो यहाँ पे कॉलेज में आए, रूम फिर एलोकेशन हुआ, फिर मैं गया न्यू हॉस्टल में, मेरा एलोकेशन मिला, एंड वहाँ पे मैं देख, जैसे मैं एंटर करके जा रहा था तो ऊपर देखा बहुत सारे सीनियर्स खड़े थे और चिल्ला रहे थे, ये नया बंदा आ गया, नया बंदा आ गया,
0: नया बंदा आ गया। थोड़ा सा मुझे थ्री इडियट्स का जो सीन है वो समझ में आ रहा है,
1: बट ठीक है, हम लोग सर नीचे करके गए, फिर रूम में सामान वामान रखा, फिर वहीं से फिर शुरुआत में मतलब पड़ोसी कौन है, दूसरे रूम में कौन रह रहा है, तो ऐसे करके फिर हमने अपना बॉन्डिंग जो है ना
0: अच्छा,
1: वहाँ पे स्ट्रॉंग किया।
0: अच्छा,
1: फिर उसके बाद हमें कोई तकलीफ नहीं हुई।
0: अच्छा, क्योंकि ये जो इमोशनल क्वेश्चन है संजय जी के, जैसे इतने दूर से हम आते, जैसे कि आप संजय जी यहाँ पे आए होंगे लेकिन ये नगर से है, थोड़ा सा एक रहता है, लेकिन इतने दूर से आने के बाद एक जो रहता ना कि अटैचमेंट, तो दोस्तों से ज्यादा होती है, तो ये कैसे अटैचमेंट आपकी डेवलप हो गई, और इसका यानी पढ़ाई के अंदर क्या क्या आपको पॉजिटिव उसके अंदर दिखाई दिया?
3: देखिए, मैं तो ये कहूंगा पढ़ाई का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक सुलझा हुआ इंसान बनाने में बड़ा मदद किया उस्मानाबाद ने, यहाँ का जो एक्सपीरियंस, जो इनबोर्न कोलैबोरेटिव एबिलिटी जगा दी वो बहुत ही बढ़िया है, और कम्युनिकेशन स्किल डेवलप किया इस जगह ने, भले मराठी भाषा रही हो या अंग्रेजी भाषा रही हो या हिंदी, लेकिन किस परिस्थिति में कैसे क्या बोलना है, कब बोलना है और कितना बोलना है, स्पेशली वो जो रैगिंग का पीरियड था उसने बखूबी हमें ये ट्रेन किया इस चीले, और मैं कहता हूँ कि ये लर्निंग्स जो है लाइफ लॉन्ग हमारे काम आ रही हैं। और बात रही कि बॉन्डिंग हमारी कैसे बन गई, अब देखिए यहाँ पर आए थे तो कोई भी नहीं था, तो जो नया मिला उसी पे ट्रस्ट किया अच्छा। और बॉन्ड बनता गया, तो बस सब साथ रहे और नतीजा देख लीजिए, 22 साल बाद भी मिल रहे हैं, 23 साल बाद भी मिल रहे हैं, तो कल की बात लगती है।
0: तर मित्रांनो, आपण जे चर्चा करत आहोत ते मिहिर पात्राजी, सौरभ श्रीवास्तव, संजय पांडेजी, डॉक्टर संजय वायकरजी हे 1996 ते 2000 या सालातील तेरणा

0: अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे विद्यार्थी आहेत. दोघं जण पुण्यामध्ये आहेत, एक जण मुंबईमध्ये आहेत आणि आत्ता जे बोलत होते संजय पांडेजी ते लंडनमध्ये आहेत. तर त्या काळातला जर आपण थोडासा, संजयजी आता तुम्ही प्राध्यापक आहात म्हणून तुम्हाला ते विचारतो, तर त्या काळातली जी शिक्षण पद्धती होती आणि तुमच्या अभ्यासाची पद्धत होती ती नेमकी कशी होती? मग
1: फ्रँकली स्पीकिंग, म्हणजे आता नॉर्मली आता मी सध्या समजा शिक्षण क्षेत्रात आहे, तर आता ते तर आपण म्हणजे नॉर्मली हे असं म्हणतो जनरेशन टू जनरेशन व्हॅरी होणारच आणि ऑब्व्हियसली ते होत आहे आणि इट्स अ गुड चेंज. म्हणजे तसं बघायला गेलं तर चांगली आहे. त्याला आपण कसं घेतोय, आत्ताचे विद्यार्थी त्याला कसं घेत आहेत हे पण खूप महत्वाचं आहे. म्हणजे अगोदरचा जो आमचा होता एरा त्याच्यामध्ये जसा हार्ड वर्क होतं, रेफरन्सेस बुकवर जास्त जोर दिला जायचा. आत्ताचे जनरेशन ठीक आहे टेक्नॉलॉजीच्या हिशोबाने ते घेत आहेत, टेक्नॉलॉजीला ते वापरून नवीन हे त्यांचा स्टडी असतो तर दॅट इज ऑल्सो गुड. पण त्यात वाहून न जाता त्या टेक्नॉलॉजीला पॉझिटिव्हली कसं घ्यायचं आणि त्याला एक्सप्लोअर करून तुम्ही कसं शिकायचं हे माझं त्यांना सांगणं असणार. आणि आमच्या याच्यामध्ये आम्ही पण शिकलो, म्हणजे त्यातून आम्ही पुस्तकातून रेफरन्स बुक मधून लायब्ररी याच्यामधून सर्वांनी आम्ही रेफरन्स करून असं आमचा अभ्यास करायचो. तेव्हा टेक्नॉलॉजी होती पण एवढी ऍडव्हान्स नव्हती, पण आता हळूहळू आम्ही पण त्याच्यावर मॅचअप झालो आणि आत्ताचा ट्रेंड थोडा वेगळा आहे, पण दॅट इज गुड. That is actually nature's call.
0: अच्छा मिहिर जी और सौरभ जी, एक चीज ऐसी है कि जैसे आप इन्होंने कहा कि पढ़ाई में क्या चेंज हो चुका है और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए वक्त के हिसाब से, लेकिन साथ में ये भी है कि आपको जो जॉब मिला, जैसे कि आप सीमेंस में हो या बिल केयर कंपनी में आप हो या कोई भी समझो है, ये तो अभी लेक्चरशिप में है, कौन सी भी कंपनी में जॉब उस वक्त मिलने के लिए क्या क्या तकलीफ आती थी या कुछ ऑब्स्टेकल्स आते थे क्या, और आज कैसी उसकी स्थिति है?
2: सी जॉब सिचुएशन जैसा था जब हमने पास आउट किए, हमने भी स्ट्रगल किया बिकॉज उस टाइम व्हाट कंपनीज आर लुकिंग फॉर द कैंडिडेट्स वो हमने एक्चुअली प्रैक्टिस किए बहुत सारे एंड देन फिर हम एंटर किए.
0: शायद कैंपस होता होगा या नहीं?
2: कैंपस नहीं था. सो हमें बाहर से हमें जो स्टैंडर्ड ना कंपनी के थ्रू रेफरेंसेस रिज्यूमे भेजते थे थ्रू फ्रेंड्स, बिकॉज हमारे फ्रेंड्स जो नेटवर्किंग बना था तो उसके थ्रू, और ऑफसाइट बहुत सारे नो दे कॉल पीपल एंड देन सिलेक्ट, बट बेसिकली दैट वाज नॉट द सिलेक्शन, मोस्टली रिजेक्शन ही होता था वहां पे.
0: अच्छा अच्छा हाँ.
2: तो बट क्या है कि एक जोश था, नहीं हमें बिकॉज नाउ वी आर क्वालिफाइड देन गो फॉर सर्टन थिंग्स. तो हार्डवर्क वहां पे था बहुत सारे, हमें लर्निंग कुछ हम पढ़ाई भी किए एंड देन अकॉर्डिंगली हम अपने आप को तैयार किया कि व्हाट कंपनी इज लुकिंग फॉर द कैंडिडेट एंड अकॉर्डिंगली फिर हमने उस हिसाब से फिर इंटरव्यू दिए. देन सी फेल्यूअर इज ए लर्निंग एक्चुअली. सो sometimes that actually motivates to do something more. तो उसी हिसाब से हमने थोड़ा तैयारी किया and we got job.
0: अच्छा.
2: So once we got job, then life becomes smooth. Then a lot of things you need to adopt in that case. So वो एक बहुत बढ़िया जर्नी and if we talk
0: देखिए ना 22 years की ये जर्नी है, इसको हम दो मिनट में तो ऐसे ही हम समअप नहीं कर सकते है. ये मुझे भी समझ आता है, लेकिन एक मैं कुछ गोल्डन वर्ड्स ऐसे चाहता था कि आपको क्या उस वक्त का एक्सपीरियंस होगा, या तो मैं सौरभ जी से भी यही पूछना चाहूंगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि ये जो चीज है जैसे इन्होंने कहा स्ट्रगल की बात है, आपको भी ऐसा कोई स्ट्रगल की बात थी या कुछ था ऐसा?
3: यस, इनिशियली स्ट्रगल था. सो बीइंग अ प्रोडक्शन इंजीनियर उस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो लाइक इंटरनेट ये सब का बहुत सारा इश्यूज था. हम लोग को जो भी अप्लाई करना पड़ता था फिजिकली जाना पड़ता था, कंसल्टेंट के थ्रू जाना पड़ता था. अभी बहुत सारे जॉब पोर्टल्स हैं, आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो. तो वो इनिशियल फेजेस में लाइक उस टाइम बहुत सारा स्ट्रगल था, बट वो स्ट्रगल क्या रहता ना, फर्स्ट जॉब तक ही रहता. फर्स्ट जॉब आपको मिल गई ना, एक बार आपने उसको क्रैक कर लिया और एक बार आप जॉब में आ गए, उसके बाद फिर ग्रोथ के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती. बट ओनली थिंग है कि आपको अपने आप को उसके हिसाब से अपग्रेड करना पड़ता है कॉन्टिन्यूअसली. विदाउट दैट मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन द इंडस्ट्री. सो आपको उसके हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करते रहोगे तो उसके बाद आगे के अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद आने लगते हैं. सो इनिशियली 3-4-5 years देर इज समाइक थोड़ा सा हार्डवर्क एंड ये सब रहता है, बट उसके बाद धीरे धीरे वंस यू सेटल डाउन ना, तो चीजें फिर आपके पास खुद

0: आने लगती है. सो वो एक इनिशियल स्ट्रगल के बाद देयर इज अ गुड टाइम.
1: अच्छा, तो संजय जी पांडे जी, आप तो मतलब ऐसा है कि सबसे ज्यादा ड्रीम तो आपके थ्रू आता है, जैसे कि आप लंदन में 22 इयर्स से स्टे कर रहे हो, तो सभी लोगों का ये रहता है कि इंजीनियरिंग करने के बाद या कोई भी पढ़ाई करो छोटी मोटी, तो हर एक का ख्वाब रहता है कि भाई हम कहीं तो अब्रॉड जाके वहीं पे थोड़ा सा रह ले, या वहां की दुनिया का बहुत सारा एक अट्रैक्शन रहता है. तो आप तो 22 सालों से लंदन में हो, तो ये कैसे रहा? क्योंकि आपके तो साथ के जो भी दोस्त है वो कोई तो पुणे में स्ट्रगल कर रहा है, कोई तो कंपनी में जॉब कर रहा है, या कोई लेक्चरशिप में जा रहा है, लेकिन आप तो डायरेक्टली आप लंदन पहुंचे.
2: नहीं, मैं डायरेक्टली लंदन नहीं गया था. मेरी भी शुरुआत कुछ ऐसी ही हुई थी. मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाऊंगा. जब हम थर्ड ईयर में थे तो हमारे बहुत सारे और भी फ्रेंड्स थे लखनऊ के, जो अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ रहे थे, तो उनके कैंपस इंटरव्यू वगैरह सब हुआ करते थे, थोड़ी बहुत जानकारी मिला करती थी. जब हम फाइनल ईयर में आए तो हमें मालूम नहीं था कि हम क्या करेंगे इसके बाद. तो मैं, मिहिर हमारे एक मित्र हैं चरणजीत, तो हम सब ने प्लान किया कि यार देखो जॉब वॉब तो मिल नहीं रही है, चलो थोड़ा और पढ़ लेते हैं आगे. तो हम लोगों ने JNTU का एग्जाम देने की सोची. तो हम सब मिलकर मिहिर के यहाँ गए उड़ीसा, हमने वहाँ से JNTU का एग्जाम दिया, जो कि कुछ खास अच्छा नहीं गया.
1: अच्छा.
2: हाँ, तो उम्मीदें वहाँ भी कम थी, तो मायूस होके अब ना नौकरी थी ना प्लेसमेंट था ना कुछ था, हम लखनऊ लौट गए और एक स्टार्टअप में मुझे उस समय जॉब मिल गई. लकली, तो आई वुड से दैट आई वाज सिंपली लकी. तो मुझे वो जॉब मिल गई एंड आई गॉट अ ब्रेकथ्रू टू बी एट ऑन साइट एज वेल इन द सेम जॉब, जबकि वो डोमेस्टिक ऑन साइट था. फिर उसके बाद मैं बैंगलोर चला गया, जहां मुझे TCS में जॉब मिल गई 3 महीने बाद. और उसके बाद जर्नी अच्छी रही. 1 साल बाद वहां से फिर मुझे 6 महीने के लिए लंदन भेज दिया गया. और वो 6 महीने अब तक पूरे नहीं हुए.
1: अच्छा. अच्छा, तो जैसे आप 22 इयर्स से लंदन में हो, जो भी आपकी जर्नी रही ये, तो आपको क्या लगता है कि आउटर वर्ल्ड में क्या चल रहा है? क्योंकि आप तो बेसिकली लखनऊ से हो, तो वहां का थोड़ा सा माहौल आपको पता है. आप दिल्ली के आजू बाजू में रह चुके हो, तो आपको वो पता है. आप उस्माद में यानी धाराशिव में आपके पढ़ाई भी की है. आपको क्या लगता है कि आउटर वर्ल्ड में क्या चल रहा है और हम कहाँ पे है?
2: देखिए, आउटर वर्ल्ड इनर वर्ल्ड सब हमारे सबका ही बनाया हुआ है. जो सोसाइटी हम रहते हैं, वी आर द वन हु मेक द सोसाइटी. तो मैं ये बोलूंगा कि जहां बात आती है सर्वाइवल की या एग्जिस्टेंस की, तो 2 ही 4 चीजें हैं जो कि आपको हेल्प आउट करेंगी स्टैंड आउट होने में. पहला है आपका कॉन्फिडेंस, दूसरा है आपका कम्युनिकेशन. नॉलेज भी जरूरी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नॉलेज कम भी हो लेकिन आपके अंदर वो शिद्दत तो सीखने की और करने की इच्छा हो मन में, तो आप गोल्स अचीव कर लोगे. तो मेरा एक ही मैसेज है कि बिलीव इन योरसेल्फ, वर्क हार्ड एंड मेक श्योर दैट यू.
1: लैंग्वेज बैरियर कितना आता है?
2: लैंग्वेज बैरियर थोड़ा बहुत आता है, लेकिन अगर वही मैंने बोला ना, आप टूटी फूटी भी इंग्लिश बोलो. जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं इस कॉलेज में जब कल्चरल सेक्रेटरी था तो मुझे मराठी नहीं आती थी, लेकिन मैंने कोशिश यही करी कि जब भी मैं किसी गाने का पहला मुखड़ा बोलूँ ना, वो चाहे टूटी फूटी मराठी हो लेकिन मराठी में बोलता था, तो उससे अप्रिसिएशन बहुत मिलता था. तो यू कैन कनेक्ट इजिली. सो लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर. अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, फिर भी अगर वेल वर्स नहीं हो, कॉन्फिडेंट रहो, खाली बोलो, लोग समझ जाते हैं.
1: अच्छा,
2: और सब ह्यूमन हैं.
1: अच्छा, ओके ओके.
2: यू कैन ऑलवेज कन्वे.
1: डॉक्टर संजय वायकर जी, आता जसं की आता यांच्या तिघांचा एक्सपिरियन्स आहे, कारण तुम्ही विद्यार्थ्यांना शिकवतात म्हणून मी शेवटी तुमच्याकडे नेहमी येतोय. तर जसं तुम्ही आता धाराशिवमध्ये शिक्षण घेतलेलं होतं, त्यावेळेस तुमचं स्ट्रगल म्हणजे तुम्ही डायरेक्ट लेक्चरशिपमध्ये गेलात का, हा पहिला मुद्दा आहे. आणि दुसरा मुद्दा असा आहे की जर आता तुम्ही विद्यार्थ्यांना शिकवताय, तर हे जे काय यांचा एक्सपिरियन्स सांगतायत, आजच्या विद्यार्थ्यांमध्ये तुम्हाला तसा काय फरक दिसतो का मुंबई आणि धाराशिव या दोन्हीच्या मध्ये जर तुलना करायची म्हटलं तर?
3: स्पेसिफिकली म्हणजे असं सांगायचं झालं, आता पहिला माझा पहिला प्रश्न सांगतो मी, की मला पण स्ट्रगल झाला. असं नाही की आणि मी डायरेक्टली नाही डिसाईड केलं की आय हॅव टू गो टू की लेक्चरशिप. पहिला 1 वर्ष मी मार्केटिंगमध्ये केला जॉब, ठीक आहे. तेव्हा थोडा स्लॅकडाऊन आला आणि नेमकं हे होतं. मग मार्केटिंगचा मी जॉब केल्यानंतर मग सडनली वन ऑफ माय फ्रेंड हे ऑलरेडी जॉईन, तर त्यांनी मला बोलवलं की तुम्ही मग एक पॉलिटेक्निक कॉलेजमध्ये मी जॉईन केलं आणि तिथे मग मला आवड लागली. म्हणजे मग माझा तो एक तुम्ही सांगू शकता की एक माणसाचं हे असतं की त्या तो बॅकग्राऊंडचाच त्यासाठी बनलेला आहे अशा टाईपने मला ते आवडायला लागलं, मला आवड निर्माण होते. आय कंटिन्यूड. आता तुम्ही सेकंड क्वेश्चन जो विचारला की आत्ताचा समजा हे म्हणजे तिकडचं म्हणजे मुंबईचे, हा समजा ऑल ओव्हर किंवा मुंबई स्टुडंट किंवा इकडे धाराशिवचे स्टुडंट, असं काही आता ऍक्च्युअली बॅरियर राहिलंच नाही खरं बघायला गेलं तर. हा, तुम्ही जर म्हणलात की फक्त एक जो न्यूनगंड असेल, आता तुम्ही जर बोललात की गावचा एखादा स्टुडंट आहे की एक रुरल एरियामधून येणारा स्टुडंट आणि त्याने जर न्यूनगंड पाळला मनामध्ये की नाही मी करू शकत नाही किंवा मला बोलता येणार नाही किंवा मी प्रेझेंट करू शकणार नाही, तर तो त्याचा हे असेल डिसएडव्हान्टेज किंवा मग त्याचा स्वतःचा हे असेल म्हणजे परसेप्शन, त्याने तो जर बाळगला नाही तर वर्ल्ड इज ओपन, म्हणजे पूर्ण प्लॅटफॉर्म सगळे ओपन आहेत आणि त्याचं पण नॉलेज तेवढंच स्टँड करतंय मार्केटमध्ये. तो कुठेही गेला तो रिप्रेझेंट केला स्वतःला, तो ऑब्व्हियसली सगळेजण त्याला वेलकम करणार आहे, तो न्यूनगंड नाही.
1: आता हे तुम्ही जसं आता म्हणजे कुठला महाराष्ट्र येतो, उत्तर महाराष्ट्र येतो ना इकडला आपला, हा तर उत्तर महाराष्ट्रातून आता हे झालं मराठवाडा समजा, मुंबई समजा, तर मग तुम्हाला असं वाटतं का की हा न्यूनगंड जो आहे मराठवाड्यातल्या मुलांमध्ये जास्त आहे रादर द्यान जर आपण मुंबईच्या जर पाहिले, कारण मुंबईचे जास्त एक्सप्रेसिव्ह असतात, थोडस ऍडव्हान्स नॉलेजचे असतात किंवा काय व्हॉट एव्हर मे बी काय असेल, तर तुम्हाला
3: सराउंडिंग मुळे आपण बोलू शकतो. बरं, पण इट इज नॉट की फक्त
1: अकॅडमिकली असा काही विषय,
3: हा अकॅडमिकली तसं, म्हणजे तुम्ही जर पर्टिक्युलरली म्हणलात की धाराशिवच्याच किंवा उत्तर महाराष्ट्र पश्चिम महाराष्ट्र कोणत्याही रुरल एरियामध्ये का असतं, कारण ते स्वतःला असं बांधून घेतात स्टुडंट की नाही माझा हा हे बॅरियर आहे किंवा तो मेट्रोपॉलिटन सिटी आहे असं आहे तिकडे तसं आहे, त्यांना ठीक आहे बॅकग्राऊंड आहे, तसं काही नसतं. तुम्ही इथे आहात, तुम्हाला पण तीच टेक्नॉलॉजी शिकवली जाते, तुम्ही ती कशी घेतात आणि तो न बाळगता तुम्ही स्वतःला कसं कॉन्फिडेंटली प्रेझेंट करताय, दॅट इज इम्पॉर्टंट.
1: अच्छा अच्छा,
3: सिम्पली.
1: अच्छा, तर ही एक खूप चांगली गोष्ट आहे आणि याच्यातून सुद्धा आपल्याला काही पुढे अजून गोल्डन वर्ड्स घ्यायचे आहेत. पण परत एकदा मी आप सभी को मैं फिर से एक बार 1996 97 98 में लेके जाना चाहूंगा. जैसे की सौरभ जी तो प्रोडक्शन के थे, आप सभी कंप्यूटर साइंस के थे, तो आप सौरभ जी को ऐसा कुछ बोलते थे कि यार आपके क्लास में तो हरियाली ही नहीं है?
0: हाँ बोलते थे ना
3: ऐसा कुछ है?
0: बोलते थे नहीं, हाँ ये तो अभिशाप था इन लोगों
1: का. अच्छा, हाँ तो उस वक्त की ये जो आपकी फ्रेंडशिप रहती थी हर एक समझो लड़कियों के साथ हो या लड़कों के साथ हो, तो क्या होता था उस वक्त ऐसा फ्रेंडशिप में? जैसे कि समझो आप कोई कैंपस में घूम रहे हो, कई लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसा या लेन देन जो है आदान प्रदान जो बोलते हैं सोच का या विचारों का, क्या होता था? क्योंकि पूरा इंडिया तो यहाँ पे बसता था, ये इस बात को तो आप मानेंगे.
0: एब्सोल्युटली एग्री करता हूँ आपकी बात से, लेकिन रेशियो इतना खतरनाक था कि 100 पे 1 वाला समझ लीजिए.
1: अच्छा,
0: तो वही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोलते हैं, तो वही सब चीजें हुआ करती थी, तो अपॉर्चुनिटीज बहुत कम रहती थी. लेकिन हाँ, अच्छा माहौल था. और जैसे मैंने कहा कि हम कंप्यूटर
1: थोड़ा सा माइक,
0: जैसे मैंने कहा कि हम कंप्यूटर्स वालों के डिपार्टमेंट में ज्यादा लड़कियां रहती थी, लेकिन मेजोरिटी जो है वो सब प्रोडक्शन वालों के साथ ही रहती थी.
1: अच्छा,
0: अच्छा माहौल था.
1: अच्छा, आप कैसे ब्राइट स्टूडेंट थे? आप जैसे तो आप चारों दोस्त यहाँ पे हो, तो आप ब्राइट स्टूडेंट थे या कैसे थे? आपको मतलब
0: ठीक था, एवरेज 4 साल में इंजीनियरिंग कर ली तो उससे ठीक ही.
1: अच्छा अच्छा, हाँ हाँ,
0: वो भी बहुत बड़ा मतलब टारगेट हुआ करता था. जब हम लोग नए नए आए थे तो सबसे ज्यादा यही डर लगता था कि कुछ लोग दिख जाते थे जो लगता था कि शायद प्रोफेसर हो, कुछ लोग ऐसे दिख जाते थे जो लगता था शायद प्रोफेसर है या हो सकते हैं प्रिंसिपल भी हो.
1: अच्छा,
0: बाद में पता लगता था ये ब्राइट स्टूडेंट है क्योंकि वो 7-8 साल से उसी क्लास में थे. वैसे एक्सपीरियंस के बाद तो हमें यही लगता था कि डिग्री हो जाए, क्योंकि मैं सच बोलूंगा फिर से एक बार कि सेकंड थर्ड ईयर तक तो मुझे ये भी नहीं पता था कि हम ऐसा क्या करेंगे कोई हमें पैसे देगा, क्योंकि बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि इसके बाद करना क्या है. तो उसके बाद और जैसे थर्ड ईयर फाइनल ईयर किया, उसके जॉब में चले गए, आज काफी प्राउड फील होता है और क्रेडिट गोज टू द कॉलेज, क्योंकि आई थिंक कुछ तो ऐसी क्वालिटीज थी जो हमने इनकलकेट करी अपने अंदर, डेवलप करी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और जिसकी वजह से हम आज एक ठीक ठाक मुकाम पर हैं जहां पे हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं. तो क्रेडिट ग्रोस टू द कॉलेज.
1: अच्छा,
0: क्योंकि फाउंडेशन वही है. और मैं सच बोलूंगा कि इंजीनियरिंग के बाद मुझे करीब 12-13 साल लग गए दोबारा कुछ और पढ़ाई करने के लिए. आई डिड MBA इन लंदन, लेकिन उसको मैंने 13-14 साल बाद किया था. और बाकी जो टेन्योर है सर्वाइवल का वो इस कॉलेज की दौरा करी हुई इंजीनियरिंग के सहारा ही कटा है.
1: अच्छा, जैसे कि मैं इसी से लेके आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर भी उतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी है. तो जैसे पुणे में रहते आप लंदन में रहते हो, तो आपको लाइफस्टाइल के हिसाब से या कुछ हिसाब से आपको कुछ अलग लगता है कि आप कुछ अलग जीवन जी रहे हो और ये कुछ अलग जी रहे?
0: इंडिया इज शाइनिंग. अभी वो सब जो डिफरेंसेस थे चले गए.
1: अच्छा,
0: अभी तो यहाँ पे क्या नहीं मिलता. हम कल ही मेहर के साथ इनके मॉल में गए. हाँ. तो ऑलमोस्ट जितनी शॉप्स हम देखते हैं लंदन में सारी यहाँ है. मैं ये बोल सकता हूँ ये बेहतर जीवन बिता रहे हैं क्योंकि इनको यहाँ मेड मिल जाती है, हमें लंदन में मेड्स नहीं मिलती.
1: अच्छा,
0: अच्छा. तो वो और दिक्कत वाली बात है. और बाकी सब तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, इनको वेदर भी अच्छा मिलता है, हमारा तो वेदर भी खराब रहता है. तो
2: जैसे मैंने बोला कि इंडिया इज शाइनिंग, अभी तो सब बढ़िया
1: है
2: यहाँ पे।
1: अच्छा, देखिए आपके लिए तो ये प्राउड मोमेंट है।
0: yes, yes,
1: और मिहिर जी, मैं ये अभी ये आपके जो चारों की दोस्ती है और आपके बाकी भी कोई बैचमेंट या फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये बॉन्डिंग के अंदर ऐसी क्या चीजें हैं जो कि आज भी आपको बांधे हुए रखी हुई है? क्योंकि आप ऐसा थोड़ा सा इमेजिन कर लीजिए कि अगर उस टाइम आपके हाथ में मोबाइल या स्मार्टफोन रहता था तो क्या आपकी भी फ्रेंडशिप ऐसी रह सकती थी क्या?
2: कंप्लीटली एग्री करता हूँ। जो उस समय की जो शॉर्ट कमिंग थी ना, वो ब्लेसिंग डिस्गाइज थी, क्योंकि हमारे पास ये मोबाइल वोबाइल डिजिटल चैनल्स नहीं थे। हाँ। तो जो कुछ होता था, हम ह्यूमन टच था, हम खुद बातचीत करते थे, समय बिताते थे, जो कि आज गायब हो गया है।
1: अच्छा,
2: इतने सारे चैनल्स बन गए हैं, इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जरूर आप मेंबर 50 ग्रुप के होंगे, लेकिन अगर आप उनमें से 4-5 के नाम के अलावा जानते भी नहीं कौन है। तो मैं बोलूंगा कि वो ज्यादा अच्छा एरा था, और उस एरा की जो बॉन्डिंग है, सी योरसेल्फ की 22 साल बाद भी हम लोग आज वही पुरानी बातें कर रहे हैं। और वो बॉन्डिंग है। तो आई थिंक जो फाउंडेशन
1: आपका मेयर कैसा एक्सपीरियंस है इसके अंदर?
4: जैसे पांडे जी ने बताया कि हम लोगों का जो है अभी क्या है ना, कि आप 5 मिनट आपको ब्रेक मिलता है ना, यू ओपन द मोबाइल एंड सी कि किसका मैसेज आया है या कुछ न्यू टॉपिक आया है। बट उस टाइम तो ऐसा कुछ नहीं था, एवरीथिंग हम सिर्फ डिस्कशन के थ्रू, म्यूचुअल नो डिस्कशन, कोई टॉपिक हो या कुछ, इवन इफ हम हंसी मजाक करते थे तो भी वो साथ में बैठ के ही करते थे, राइट। सो वो एक वो जो एरा था ना, वो एक मतलब एक जो आजकल नहीं दिखता, मतलब पर्सनली जो है ना बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग था। आज वो हम बोलते हैं बॉन्डिंग, बट वो ऐसा नहीं है, बिकॉज दैट्स से बिकॉज पीपल आर मोर इन्वॉल्व इन द आउटसाइड डिमांड बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल स्पेंड ऑन दैट। बट वो जो मेमोरीज की पर्सनल टच, जैसे पांडे जी ने बताया कि पर्सनल टच से उसका अभी तक वो रिफ्लेक्शन है, राइट। जो आजकल के मुझे से लगता है कि हम फ्रेंड्स बनाते हैं, बट दैट इज समथिंग शॉर्ट लिविंग, इट्स नॉट नो लॉन्ग लास्टिंग, राइट। सो वो जो पर्सनल टच था, म्यूचुअल नो आमने सामने बैठ के डिस्कशन, वो बॉन्ड अभी भी कंटिन्यूटी है और आगे भी चलता रहेगा लाइफ लॉन्ग।
1: अच्छा, सौरभ श्रीवास्तव जी, जैसे इसी को थोड़ा सा आगे और लेके जाना चाहूंगा, जैसे कि आप गोरखपुर से थे तो आपको लेटर आता होगा, तो आप यानी फैमिली से लेटर आता होगा, तो आप राह देखते होंगे कि यार मेरे घर से लेटर आ रहा है, तो वो जो है वो
0: नहीं सर,
1: जो मोमेंट्स आप नहीं दिखाई देते जैसे कि मोबाइल के।
0: सो एक्चुअली लेटर तो नहीं आता था उस टाइम पे, ड्राफ्ट का इंतजार करते थे हम लोग, वो महीने में एक बार आता था। लेटर नहीं आता तो हम लोग को क्या, कॉल करते थे। तो पीसी होता था इधर और हॉस्टल में फोन लगे हुए थे, तो सबका टाइम स्लॉट फिक्स था, तो उस टाइम पे घर से फोन आता था, अदरवाइज हम लोग इधर पीसीओ से जाके कॉल करते थे। सो वो हम लोग जब कॉल करते थे तो लाइन लगती थी, नॉर्मली लाइन लगी अपना उधर अंदर, जो हम लोग ठकाते थे ज्यादा देर हो गई तो भाई बाहर निकल, हमको भी बात करनी, हमारा भी टाइम दे रखा है हमने। सो वो सब मेमोरीज थी। बट एक चीज है कि वो 4 साल जो हम लोग ने बिताए ना, मतलब उसमें कुछ फॉर्मेलिटी नहीं होती थी। हम लोग रहते थे, हमें सब डोर खुले रहते थे, मतलब ये नहीं कि इसका रूम है, वो उधर आके बैठा है, वो उधर आके बैठा है, वो उधर गप मार रहा है, वो इधर बैठा हुआ है। सो वो 4 साल जो साथ रहे ना, वो बॉन्डिंग जो क्रिएट हुई ना, वो दैट इज बिकॉज इतना टाइम हमने और किसी के साथ बिताया नहीं। 4 साल एक साथ रहना और कोई फॉर्मेलिटी नहीं, मतलब ये नहीं कि, और एक चीज और रहता था, जहां सीनियर मिल गए फिर पैसे नहीं खर्च करने का।
1: अच्छा,
0: ये बहुत समय का बहुत, मतलब आई डोंट नो बट अभी क्या चल रहा है, बट उस टाइम पे तो ऐसा रहता था, सीनियर है ना साथ में, मिल गया कहीं कुछ अच्छा रैगिंग ली, चलो कहीं दिख गया, चलो पहुंच गया, हाँ सर, सर झुका के खड़े हो, हाँ भाई क्या खाओगे।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो वो सब कर करके वो एक, मतलब ऐसा बॉन्ड डेवलप हो गया ना कि विच इज लाइक, हम लोग आज भी इतने टाइम बाद मिल रहे हैं, बट कभी ऐसा लगा नहीं। वो आज भी लगता है कि वो पीछे वाली ही बात है, अभी जस्ट 2 दिन पुरानी तो बात है, हम डिग्री करके इधर से निकले थे। सो वैसा ऐसा, मतलब काफी लोग के साथ ऐसा डेवलप है। आज के डेट में ऐसा है कि कहीं पे भी रहो ना, अगर उस्मानाबाद वर्ड सुना ना तो आदमी रुक जाता है एक बार। अच्छा उस्मानाबाद, मैं भी 4 साल जूनियर, मैं भी हो सकता हम जब निकल गए उसके बाद का कोई हो, बट वो एक इस जगह से ऐसा लगाव हो गया है ना कि वो अपने आप उस्मानाबाद बोला ना तो एकदम थोड़ा सा लाइक,
1: क्योंकि ये मैं क्यों जानना चाहता था, क्योंकि आज अगर मैं यहाँ पे कॉलेज कैंपस में देखता हूँ तो चार पांच दोस्त बैठे हुए हैं और वो अपने अपने मोबाइल में सर नीचे झुका के बैठे हुए हैं, तो एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं, इमोशनलिटी कम हो गई है, ऐसा यहाँ पे तो दिखाई देता है. संजय वायकर सर त्याला अजून थोडस एक्सप्लेन करून व्यवस्थित सांगू शकतील. तर हा जो इमोशन आहे, आता आपकी शादी भी हो चुकी होगी, आपके बच्चे भी होंगे, तो शायद आप इसको महसूस करते होंगे कि शायद ये नहीं हो रहा है आजकल के जनरेशन में. क्योंकि एक मैंने ऐसे यहाँ के स्टूडेंट से सुना हुआ था कि मिलेनियल जनरेशन और जेन जी जनरेशन ऐसा कुछ तो

0: नाही राहिला. पण मग कसा आणायचा तर त्याच्याबद्दल आपण विचार करू शकतो की समजा मग तो कसा आणायचा, त्याच्यावर ब्रेन स्ट्रॉमिंग झालं पाहिजे. समजा ते मिसिंग आहे तर मग ते कसं आपण करू, मग ते आता आपल्यासारख्यांनी आम्ही आता हे सांगतोय समजा जीव तोडून की नाही बाबा हा तसा काळ खूप छान होता. मग आताच्या जनरेशनला पण वाटलं पाहिजे हा आपण पण का नाही विचार करू तसा एक स्पेंड करायचा टाइम, वाय नॉट. समजा फॉर एक्झाम्पल कॉलेज स्टुडंट आहे तर मग कॉलेज स्टुडंट आलं तर मग ते मोबाईल ठेवा तुम्ही घरी, आपण कॉलेजमध्ये चाललोय तर कॉलेजचं आता ह्या ऍट प्रेझेंट वी आर गोइंग टू एन्जॉय दॅट टाइम.
1: म्हणजे हे सेल्फ रिअलायझेशन.
0: हा यस करेक्ट.
1: अच्छा
0: म्हणजे असं समजा आम्ही सांगतोय मग असं दुसऱ्यांच्या याच्यावरून पण आपण शिकलं पाहिजे. हे एक समजा माझं सोल्युशन झालं, असं प्रत्येकाने शेअर केलं तर सापडू शकतो एखादा मार्ग.
1: बरोबर
0: असं माझं मत आहे.
1: क्योंकि आजकल जनरेशन इमोशनल बॉन्डिंग, माता पिता के साथ कैसे रहना, ये समझ में नहीं आता. तो ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम हमारे बच्चों को सिखाए कि ये मॉरल वैल्यूज क्या है. तो इसके हिसाब से मैं वहाँ हमेशा आपके जनरेशन के जब भी आते 90 के पहले 90 या 96 या 2000 के, तो आपके अंदर जो इमोशंस है वो आज नहीं दिखाई देते, तो वो भी थोड़ा सा जरूरी है आज के जनरेशन के लिए, इसे मैं पूछना चाहता था. फिर से एक बार मैं एंड में ये पूछना चाहूँगा कि ऐसे क्या गोल्डन वर्ड्स है आपके लाइफ के, आपके पूरे थ्रू आउट लाइफ के जर्नी के, कि आपकी शादी भी हो चुकी है, अब आप आपके बच्चे भी है, आप फिर से एक बार उसी दौर में आ चुके हो 1996 के, तो आपको क्या लगता है कि लाइफ के लाइफ को आसान करने के लिए या लाइफ को सक्सेसफुल करने के लिए ऐसे क्या गोल्डन वर्ड्स है जो आप सभी कहना चाहोगे
2: प्लीज. मैं कहूँगा
1: हाँ, उसके पहले थोड़ा सा और एक मैं इसको ऐड करना चाहूंगा कि आपने कहा था कि कल्चरल कमेटी के भी आप सेक्रेटरी थे, तो उस टाइम कल्चरल एक्टिविटीज क्या होती थी और आप क्या क्या करते थे लास्ट गोल्डन वर्ड से पहले.
3: सो उस समय काफी कुछ हुआ करता था, स्किट्स होती थी, सॉन्ग्स होते थे और ड्रामास वगैरह भी होते थे, तो मैं मोस्टली एंकरिंग करता था.
1: अच्छा,
3: एंकरिंग करता था और मेरे साथ में चरणजीत भी थे तो वो भी एंकर किया करते थे. डांस परफॉर्मेंस हुआ करते थे तो अक्रॉस ईयर्स लॉन्ग करते थे. हमारा वो मेन इवेंट होता था साल का, और उससे पहले हमारे एनुअल स्पेशल गैदरिंग के सारे इवेंट स्पोर्ट्स हुआ करते थे. तो दैट वाज लाइक वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल इवेंट ऑफ द ईयर.
1: अच्छा, लेकिन आप सभी इसमें पार्टिसिपेट करते थे. उस टाइम तो आप हीरो ही होते होंगे. तो वो तो
2: अपना और एक फ्रेंड था चरणजीत, ही वाज द प्रेसिडेंट राइट, जनरल सेक्रेटरी एंड ही वाज द कल्चरल.
1: क्योंकि ऐसे एक बैच के शायद उन्होंने कहा था, वो सैम पैट्रिक वगैरह आए थे उस टाइम, क्लेमन पैट्रिक और क्या, हाँ तो उनका तो ऐसा कुछ तो था. तो उन्होंने ऐसा कहा था कि उस टाइम सिलेक्शन होता था, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करना चाहते थे. आज तो शायद ऐसा नहीं होता होगा. तो ऐसा कुछ आपने कुछ कहीं कुछ पार्टिसिपेट किया था उस वक्त?
2: हाँ, यहाँ पे तो कॉलेज में जो अपना चार साल में हमने फर्स्ट ईयर आई थिंक पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स हमने पार्टिसिपेट किया था कुछ ना कुछ एक्टिविटीज. एंड फाइनल अपना फेयरवेल में हमने
1: फिल्में वगैरह उस टाइम देखते थे क्या था.
2: अरे वो तो सोलापुर जाते थे
3: एक रात में तीन पिक्चर देखते.
1: अच्छा,
2: हाँ क्योंकि वो ऐसा था कि हम महीने में एक या दो बार जाते थे, तो फिर वो कोटा पूरा.
1: अच्छा,
2: तीन
3: हमारे एनुअल सोशल गैदरिंग का फुटबॉल मैच में शायद अभी के प्रिंसिपल साहब रेफरी थे.
1: अच्छा, माने सर. अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा अच्छा. तो ये जो अभी आप क्या कहना चाहोगे, फिर मैं जो पहले क्वेश्चन पूछा था कि गोल्डन वर्ड्स क्या ऐसे होंगे कि जो कि लाइफ को आसान भी बना सके, सक्सेसफुल भी बना सके.
2: मैं ये कहूंगा कि जो मैंने लर्निंग की है मेरे लाइफ में, दैट्स अ डिसिप्लिन लाइफ. डिसिप्लिन, व्हाट एवर यू डू बट मेंटेन द डिसिप्लिन, एवरीथिंग विल गो योर वे. सो आई मीन आप खाना भी खाते तो एक डिसिप्लिन वे में भी खाना है, कौन से टाइम में खाना है, स्टडी करना है, अदर एक्टिविटीज आपको फिजिकल एक्टिविटीज करना है, तो ये एक लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. अगर आप फॉलो करोगे डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन लाइफ एंड लॉट ऑफ आई मीन यू नो मेमोरीज इफ यू गो अलॉन्ग व्हाट यू डिड इन द पास्ट एंड नो फ्यूचर में आपको बहुत सक्सेस
1: मिल सकता है. जी सौरभ जी, अभी ये मिहिर महापात्रा जी ने आपको ये गोल्डन स्वर्ड दिया, अभी सौरभ जी के पास जाएंगे.
4: तो मिहिर सर की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं बोलूंगा कि लाइक ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स.
1: ओके,
4: बिकॉज क्या होता है कि बहुत टाइम जब हमने भी इनिशियली बहुत सारे फेलियर्स देखे, उस फेलियर्स को अगर वहां पे हम थोड़ा सा अगर रुक जाते या थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा होता था तो आगे बढ़ने के लिए बहुत मुश्किल होती थी। बट उस फेलियर से हम लोग सीखते गए, इंटरव्यूज देते गए,

0: आपण ऐकताय रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज. सुरेल संगीत, विविध घडामोडी, शेती, महिला, युवक यांचं व्यासपीठ, सुरेल संगीताचा नजराणा. ऐकत रहा, आनंदी रहा. रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज.
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे. हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है. साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है. हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह.
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है.
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी.
3: विश्व शांतीचा महापर्व पर्युषण पर्व, पर्युषण पर्व, पर्युषण पर्व. श्रोते हो, पर्युषण पर्व हे जैन धर्मातील महत्त्वाचं व्रत समजलं जातं. मुळातच पर्युषण या शब्दाचा अर्थ आहे मनातील सर्व विकारांचं शमन करणं, जसे की काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, वैमनस्य असे कितीतरी विकार असू शकतील. अशा विकारांपासून स्वतःला दूर करून आत्मशांती प्राप्त करून घेणे, तसेच आध्यात्मिक प्रगती साधत पर्युषण पर्वाच्या काळात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य अशा तत्वांचं पालन करणं. 10 दिवस चालणाऱ्या पर्युषण पर्वाच्या काळात दशलक्षण धर्माची उपासना केली जाते. तेव्हा या पर्युषण पर्वातील 10 दिवसांमध्ये प्रत्येक दिवशी आपण एक एक लक्षण म्हणजे धर्म कसा अंगीकारायचा याविषयी जाणून घेणार आहोत. तेव्हा आज 9वा दिवस, आज आपण ऐकूयात उत्तम अकिंचन याविषयी सौरेखा फडकुले यांनी सांगितलेली माहिती.

गणपति बाप्पा हे मंगलमूर्ति झाला।

0: आपण ऐकताय रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज, सुरेल संगीत, विविध घडामोडी, शेती, महिला, युवक यांचं व्यासपीठ, सुरेल संगीताचा नजराणा. ऐकत रहा, आनंदी रहा, रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज.
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे. हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है. साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है. हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह.
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है.
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी.
0: संगीत आपल्या मनाचा आरसा, संगीत आपल्या मनाचा संवाद, गाणी जी साकवतात आपल्या मनातील भावनांचे तरंग, हृदयस्पर्शी गाणी, मन स्पर्शून जाणारी गीत, साद घालणारे आवाज, ऐका आमच्या हिंदी चित्रपट संगीताच्या कार्यक्रमातून. ऐकत रहा रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज. ऐकत रहा, आनंदी रहा.

मुंजिया जी, ये वाली मुन्नी चलेगी।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

बॉय बन जाता हूँ yeah. उड़ती है खबरें लेता ना स्ट्रेस गेम का कार्ट ऑन टू द नेक्स्ट हो प्लेन है प्राइवेट लाइफ है ब्लेस मुट्ठी में गेम मेरे घंटे पे प्रेस बैड बॉय शाह कैसे तुझे तेरे बस का लगा ना मुझे ऐसे मस का लगा रही ना किसी काम धाम की जब से लड़की को चस्का लगा

0: पिघलाती है, बल खाती है, तन का चंदन वो छलक छलक झलकाती है, वो नैन द्वार से तन में आके मन में ज्वाला जगाती है, वो चंद्रमुखी है, वो मृगनैनी है,
1: वो चंद्रमुखी है,
0: वो मृगनैनी है, वो रूपवती है,
1: वो

0: तक
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम
2: मेरी
1: है
2: तो सुनो।
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
2: जाए,
1: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर
2: मंडी।
1: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती,
2: इंटीरियर
1: डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
2: ओके दैट्स इट।

0: आपली पसंत आमची आवड, मनस्वी संगीत, शेती, महिला आरोग्य, विशेष कार्यक्रमांचा नजराणा, आपला रेडिओ तेरणा। ऐकत रहा, आनंदी रहा। रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं, आपला आवाज। क्रिस्टल क्लिअर आवाजासाठी डाउनलोड करा आमचा ऍप प्ले स्टोर वरून। टाइप करा रेडिओ तेरणा 90.4। रेडिओ तेरणा आता रेडिओ गार्डन वरही उपलब्ध, तसेच radio.coeusmanabad.ac.in वेबसाईट टाकूनही आपण रेडिओ तेरणा ऐकू शकता। ऐकत रहा रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं, आपला आवाज। ऐकत रहा, आनंदी रहा।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: नमस्कार, आपण ऐकत आहात रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं, आपला आवाज। मित्रांनो, आपण तेरणीची प्रेरणा या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जाणून घेत असतो अशा सर्व विद्यार्थ्यांचा जीवन प्रवास, ज्यांनी तेरणा अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून आपलं शिक्षण पूर्ण केलेलं असतं आणि त्यानंतर जीवनाचा प्रवास करत असताना आयुष्याच्या एका उंचीवर अशा उंचीवर जाऊन पोहोचतात की त्यांचा हा जीवन प्रवास आपल्या सर्वांसाठी प्रेरणा असतो आणि आपण त्याच्यातून अनेक असे मुद्दे घेतो, पॉईंट्स घेतो, ज्याच्या माध्यमातून आपल्यालासुद्धा पुढे जीवनामध्ये असं मार्गक्रमण करत असताना आपल्या संघर्षामध्ये कमी येऊ शकते। आणि अशा पद्धतीचा आपण हा कार्यक्रम तेरणीची प्रेरणा या नावाखाली चालवतो आणि अनेक अल्युमिनियमचे जे तेरणा अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून शिक्षण घेऊन गेलेले आहेत अशा विद्यार्थ्यांची जीवनगाथा आपण या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून ऐकलेली आहे। आज हे रेडिओ तेरणासाठी अतिशय खूप सुंदर आणि खूप चांगला दिवस आहे आजचा, खरं तर कारण आज रेडिओ तेरणाच्या स्टुडिओमध्ये खास व्हिजिट केलेले 1996 ते 2000 या कालावधीमध्ये शिक्षण घेतलेले, 2000 साली पासआउट झालेले अनेक विद्यार्थी या ठिकाणी रेडिओ तेरणाला व्हिजिट देण्यासाठी आलेले आहेत आणि आज आपण त्यांच्याशी चर्चा करणार आहोत, त्यांचाही जीवन प्रवास जाणून घेणार आहोत। आपल्या रेडिओ तेरणाच्या स्टुडिओमध्ये इथे माझ्यासमवेत आहेत श्री मिहिर महापात्राजी। ते मूळतः ओडिसा इथून राहणारे आहेत, सध्या पुणे येथे कार्यरत आहेत सिमेंट्स कंपनीमध्ये। त्यांचं कम्प्युटर सायन्समध्ये शिक्षण झालेलं आहे। त्यांच्यासमवेत आहेत श्री सौरभ श्रीवास्तवजी। ते मूळतः गोरखपूर येथील आहेत उत्तर प्रदेश। ते पण सध्या पुणे येथे बिल केअर रिसर्च या कंपनीमध्ये कार्यरत आहेत आणि ते प्रोडक्शनमध्ये त्यांचं शिक्षण पूर्ण झालेलं आहे। माझ्यासमवेत आहेत श्री संजयजी पांडे। ते मूळतः लखनौ उत्तर प्रदेश येथून आहेत आणि आता सध्या म्हणजे गेल्या 22 वर्षापासून लंडन इथे स्थायिक आहेत आणि ते BNP अशा एका कंपनीमध्ये कार्यरत आहेत, त्याही विषयी आपण जाणून घेणार आहोत। आणि आपल्यासोबत आहेत डॉक्टर संजयजी वायकर। ते असोसिएट प्रोफेसर आहेत MGM कॉलेज मुंबई इथे आणि बेसिकली ते अहमदनगरमधून आहेत आणि त्यांचं पण कम्प्युटर सायन्समध्ये शिक्षण झालेलं आहे। मी खरं तर आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो, आम्हाला खूप आनंद होतोय रेडिओ तेरणामध्ये आपलं स्वागत करताना।
4: थँक्यू।
3: तो सर्वप्रथम तर मी मिहिर महापात्रा जी आपसे मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कि आणि ऐकणारे श्रोते हो, आता हे सर्वजण जे आहेत ते हिंदी मध्ये बोलणार आहेत, फक्त केवळ श्री डॉक्टर संजय जी वायकर जे आहेत ते अहमदनगरचे आहेत, ते मराठी मध्ये आपल्याला सर्वांशी संवाद साधतील। बट मिहिर महापात्रा जी, आप लगभग 2000 में पास आउट हो चुके हो, अभी 2023 का लास्ट मंथ स्टार्ट है, तो अभी ये 22-23 सालों के बाद आप जब कैंपस में आ रहे, आप सभी के लिए क्वेश्चन है, तो आपका मतलब मेमोरीज कैसे चेरिश कर रही है और आपको पुराने जमाने का जो भी है वो कैसे यादें अभी आ रही है?
4: क्या फर्स्ट टाइम जब हम लैंड किए उस्मानाबाद में तो हम देखना चाहते थे कि
3: आप उस्मानाबाद का आप धाराशिव
4: ओके तो धाराशिव पे जब हमने लैंड किया फर्स्ट टाइम तो हम पहले देख रहे थे कि क्या क्या चेंजेस हुआ है। सिटी में। तो अपने पुराने यादें के हिसाब से हम देख रहे थे कि कौन से शॉप पे हम जाते थे, कौन से रेस्टोरेंट पे हम जाते थे खाना खाने, और कौन से विजिटिंग प्लेसेस था जहाँ पे अभी चेंजेस बहुत सारे देखे, बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं वहाँ पे। एंड वो देख के बहुत अच्छा लगा क्योंकि बिकॉज सब जगह पे अभी सिटी इज ग्रोइंग, सो यहाँ पे भी हमें धाराशिव में भी देखने को मिला, सो दैट इज वेरी नाइस थिंग हैपेंड। एंड कॉलेज में जब हम आए, हम देखे थे कम्प्लीटली सीन चेंज्ड हियर। सो उस टाइम जो हमारे फेवरेट हॉस्टल्स, जो हम उसको टाइटैनिक बोलते थे, बिकॉज उस टाइम हम बाहर से, हम जब हम लाइट लगाते रात में तो हम देखते थे कि पूरा कम्प्लीटली वो टाइटैनिक लुक दिखता था हमें। तो वही हम बात करके के आ रहे थे। एंड आने के बाद हमें देखा कि यहाँ पे कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत सारे चेंजेस देखने को मिला। एंड कॉलेज का फ्रंट तो एज इट इज है, एंड अंदर इनसाइड जो है वो वैसा था जो हम यहाँ पे अपना फायरवेल एंड नो ऑल द प्रोग्राम्स, कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पे कंडक्ट किए थे। एंड वो मेमोरी हमें यहाँ आके फिर से याद आ गई।
3: सौरभ जी, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा जब, या आप पहली बार ही आ रहे हो 23 इयर्स में?
5: मैं पहली बार आ रहा हूँ आफ्टर डिग्री कम्प्लीशन के बाद। सो जैसे इधर हम लोग उतरे, उसके बाद से वो मेरे को 1997 याद आया जब मैं इधर एडमिशन के लिए फर्स्ट टाइम आया था।
3: अच्छा।
5: और उस दिन के बाद से ये 23 इयर्स पूरा जो है ना दिमाग में फ्लैशबैक चलने लगा कि वो फर्स्ट डे जब हम यहाँ उतरे थे, लाइक उस टाइम पे, अभी तो बहुत डेवलपमेंट हो गया, उस टाइम पे तो लाइक आंधी के लिए भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स थे, उस्मानाबाद जाओ फिर उस्मानाबाद से इधर आओ, देन ये सब अभी तो काफी डेवलप हो गया सब कुछ उस टाइम पे। फिर एक मतलब जब स्टार्टिंग में आए थे तब लगा कि अरे यार यहाँ 4 साल कैसे निकालेंगे, अपने को 4 साल अभी इधर पढ़ना है। बट धीरे धीरे धीरे जब हम लोग सबसे मिलना, फिर सीनियर्स जूनियर्स, उसके बाद वो ऐसा बॉन्डिंग हो गया ना कि आज 22 इयर्स के बाद हम लोग मिल रहे हैं, हम चारों लोग 22 इयर्स के बाद मिल रहे हैं।
3: अच्छा।
5: बट वो एक पल भी ऐसा लगा नहीं कि हम 22 इयर्स के बाद मिल रहे हैं। वो बॉन्डिंग और वो जो डेवलप हुआ ना हॉस्टल में, और वो जो लर्निंग्स हम लोग को मिली, दैट इज फिनोमिनल। मतलब हम लोगों ने वहां से बहुत कुछ सीखा जब हम लोग हॉस्टल में रहे, यहाँ से पढ़ाई की, बहुत कुछ सीखने को मिला हम लोगों, और चेंजेस तो लाइक वन कैन नॉट इमेजिन।
3: ओके,
5: इट इज लाइक दैट। वरना हम लोग तो यही देख रहे थे यार, हम तो ऐसे जाते थे इधर, तो ऐसे अप डाउन होता था, घाटी होती थी, घाटी से हम लोग इधर जाते थे, इधर से उधर जाते थे। सो इट इज मतलब कम्प्लीटली चेंज।
3: अच्छा, अभी भी मुझे आपके चेहरों से दिखाई दे रहा है कि आप फ्लैशबैक में ही हो।
5: हाँ, वो भूलता ही नहीं है। तो, वो भूलता ही नहीं है।
3: संजय जी, आप तो 22 इयर्स से लंदन में हो, तो आपके लिए तो बहुत ज्यादा ये इसकी जो मेमोरीज है वो ज्यादा आपको टीज कर रही होंगी।
6: मैं सच बताऊंगा, बाकी जैसे इन दोनों लोगों ने कहा, नॉस्टैल्जिया तो है ही है, और चेंजेस जो हुए बहुत बेहतरी के और अच्छे के लिए। जैसे कि सबसे बड़ा चेंज है उस्मानाबाद में ट्रेन स्टेशन हो गया है, तो हम कम्यूट कर सकते हैं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ है वो सब। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि मैं उस्मानाबाद से कभी अलग हुआ ही नहीं।
3: अच्छा।
6: लास्ट 22-23 सालों में मैं आज भी बहुत लोगों के कॉन्टेक्ट में हूँ।
3: अच्छा।
6: और रेगुलरली टच में रहता हूँ। यहाँ से आने से पहले भी मैंने मानेसर से बात करी थी, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है। और एक इंसिडेंट बताऊंगा, लंदन वाटरलू स्टेशन पे मैं खड़ा था, जहां पे मैं कभी उम्मीद भी नहीं कर सकता कि कोई मिलेगा। एक बंदे ने आके मुझसे पूछा, आप संजय पांडे हो?
3: अच्छा।
6: तो मैंने कहा मैंने आपको पहचाना नहीं। फिर उन्होंने बोला उस्मानाबाद। हमने अगली दो ट्रेन छोड़ दी और हम वहां पे बैठ के बातचीत करी, और बहुत ही अच्छा लगा। और ये सब एक्सपीरियंस जो है इतने क्लोज है हार्ट के, इसको बयान नहीं किया जा सकता।
3: बिल्कुल।
6: रही बात कॉलेज की, तो हमने 4 गोल्डन ईयर्स यहाँ बिताए। यहाँ पे जो बारिश का मौसम, उसमें गरम गरम पराठे खाना किरण में, इसके वो कहीं नसीब नहीं हुआ इसके बाद।
3: अच्छा।
6: दुनिया घूम ली, लेकिन मजा जो उस्मानाबाद का है, स्विट्जरलैंड फेल है उस्मानाबाद के।
3: इतनी बड़ी बात कही आपने। संजय जी पांडे, इनसे भी और बात करना चाहेंगे, लेकिन आता आपल्या सोबत आहे डॉक्टर संजय जी वायकर, ते असोसिएट प्रोफेसर आहेत। आपण पण खरं तर आता हे सगळे लखनौ उत्तर प्रदेश आणि 2000 गोल्डन इयर आहे, तसा तर म्हणजे त्याच्या अगोदरचा जो आहे तेरणा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचा, कारण पूर्ण भारतातले लोक जे आहेत ते आपल्याला या तेरणा इंजिनियरिंग कॉलेजच्या कॅम्पसमध्ये दिसून येत होते, तर तुमचा एक्सपिरियन्स कसा आहे तो एक सांगावा।
7: माझा एक्सपिरियन्स खूपच छान आहे, आणि ह्या सर्वांनी जसं शेअर केलं, जे माझे बॅचमेट्स आहेत आणि खूप छान मित्र आहेत, एवढ्या वर्षापासून आम्ही टचमध्ये आहोत, आणि उस्मानाबादचं लाईफ दॅट इज म्हणजे त्याचं तुम्ही वर्णन नाही करू शकत शब्दामध्ये, असं एक ते एक आहे, अवर्णनीय क्षण होते ते 4 वर्ष, फारच सुंदर होते। त्यातून खूप काही शिकायला मिळालं, खूप काही लोकांना जोडायला मिळालं, आणि जसं आता तुम्ही बोललात की प्रत्येक जण आपापल्या क्षेत्रात खूपच छान प्रकारे ते उत्तम कामगिरी करतायत, आणि तसंच मी एक माझं क्षेत्र हे एज्युकेशन फील्डमध्ये निवडलं. मी मुंबईमध्ये स्थायिक होतो अगोदरपासून, आणि त्याप्रमाणे मी एज्युकेशन फील्डमध्ये ग्रो करत आहे आता.
3: अच्छा.
7: आणि चेंजेस सांगायचे झाले तर सर्वांनी वर्णन केलं त्याच्याही पुढे जाऊन मी सांगेल की खूप म्हणजे आत्ताचा ज्या टाईमला जे रिक्वायर्ड आहे ॲज पर टाईम जे रिक्वायर्ड आहे त्याच्याही पुढे जाऊन ते खूप चांगली कामगिरी करत आहे आपलं कॉलेज.
3: अच्छा.
7: असं मी बोलू शकेल.
3: बरं वायकर सर, मी आता परत यांच्याकडे येतो पण तुमच्यापासून जरा थोडीशी परत एकदा सुरुवात करतो की आपण तर महाराष्ट्रातून म्हणजे नगर म्हणजे लगतच्या जिल्ह्यातून आलेला होतात, तुम्हाला तसाही हा एरिया माहीत होता, पण त्या काळामध्ये पाहत असाल की अनेक राज्यातले जे स्टुडंट आहेत ते या ठिकाणी, मग तुमचं कम्युनिकेशन यांच्यासोबत मैत्री होताना कशी झाली, आणि म्हणजे त्यावेळेसचा जो पिरियड होता रॅगिंगचा असा बराचसा काही असायचा, मग तुम्हाला भीती म्हणून होती का नेमकं काय होतं?
7: नाही नाही बिलकुल नाही. आम्ही जेव्हा फर्स्ट म्हणजे मी जसा डायरेक्ट सेकंड इयरला आलेलो, परंतु हे जसे फर्स्ट इयर पासून आलेले, पण यांनी जे ग्रीट केलं आम्हाला आणि जे आम्ही पहिल्या भेटीमध्येच जे आम्हाला आपुलकी वाटली ती कुठेच मिळाली नाही. म्हणजे असं कधीच वाटलं नाही की समजा हे आपण म्हणजे आम्हालाही नाही वाटलं त्यांनाही नाही वाटलं, कारण ते त्यांनी तसंच ट्रीट केलं आणि आम्ही तसंच ट्रीट केलं, आणि दॅट वॉज की असं म्हणजे कुठेच बोलू शकत नाही की आपण रॅगिंगचा पिरियड होता असं काही नाही, कुठे भीती नव्हती आणि खूप छान वातावरण झालं आणि आमची मैत्री कधी झाली आणि ती आता म्हणजे आता जसं मी म्हणलो की ती खुद कधी संपणार नाही अशी मैत्री.
3: अच्छा संजयजी, जैसे मैं आपके तरफ थोड़ा सा आना चाहूंगा फिर से एक बार, कि जैसे इन्होंने या शायद इन्होंने कहा था कि टाइटैनिक के जैसा लुक दिखता है हॉस्टल का, तो उस वक्त शायद इतना ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं था, यहाँ का एरिया भी थोड़ा सा आउटसाइड था सिटी से, तो आपने फर्स्ट आपका इम्प्रेशन क्या हो गया था जैसे ही आपने यहाँ पे कॉलेज में लैंड किया?
6: जब मैं कॉलेज में लैंड किया हम आ रहे थे तो मैंने रिक्वेस्ट किया कंडक्टर से बस रोक दो भाई हम उतर जाएं, तो उसने बस रोकी नहीं.
3: अच्छा.
6: तो ऑल द वे लेके गए हमें सिटी तक, वहाँ पे करीब आधा घंटा 45 मिनट लगा हमें टमटम मिलने में.
3: हाँ.
6: जिसके थ्रू हम आए, लेकिन बारिश हो रही थी तो मौसम बहुत अच्छा था.
3: हाँ.
6: और देखने में बड़ा सुंदर लग रहा था. यहाँ पर हम उतरे तब ये सब जो रोडें अभी बनी हुई है सब कुछ नहीं था.
3: ओके.
6: तो काफी पानी भरा हुआ था, गीला सा माहौल था, लेकिन कॉलेज बड़ा सुंदर दिख रहा था, ये सब बिल्डिंग्स भी नहीं थी. तो थोड़ा हार्डशिप तो लगा था लेकिन डिसअपॉइंटमेंट नहीं था क्योंकि वेदर बड़ा अच्छा था. और इतने सारे लोग दिख रहे थे और मन में बड़ा एक एक्साइटमेंट भी था कि इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं. और उसमें कॉलेजेस बड़े कम हुआ करते थे और स्पेशली हम लोग जो है काफी दूर से आ रहे थे, जैसे मैं खुद लखनऊ से आ रहा था. तो इट वॉज जस्ट लाइक यू नो द स्टार्ट ऑफ अ न्यू चैप्टर इन द लाइफ, सो ऑल पॉजिटिविटीज थी. और हाँ थोड़े इनकन्वीनियंस थे, वो तो हर जगह रहते हैं. समय बदल गया आज इतना, इसलिए हमें सब मॉडकॉन्स दिख रहे हैं, बट यू नो वी हैड अ गुड टाइम, सो इट वाज अ गुड स्टार्ट, मैं तो ये बोलूंगा.
3: अच्छा. तो सौरभ जी और मिहिर जी, जैसे कि इन्होंने कहा कि मैं इसलिए ये क्वेश्चन करना चाहता था कि जैसे आप दिल्ली के आजू बाजू में रहते हो
6: जी जी.
3: तो वहां का माहौल एक सिटी का एक लाइफस्टाइल की भी बात है, सब कुछ है, तो हर एक का ख्वाब रहता है कि कुछ अलग कॉलेज में आना या कुछ पढ़ाई करना. तो फिर जैसे ही आपने यहाँ पे आया आपका एकेडमिक स्टार्ट हो गया होगा. हाँ. तो कैसा रहा फिर आपका जो पहला साल है दूसरा साल है, कैसा रहा पढ़ाई के हिसाब से भी और यहाँ के माहौल के हिसाब से भी?
5: सो पहला साल लाइक जब हम लोग यहाँ आए, लकली पांडे जी की बस नहीं रुकी थी, बट मेरी बस ने मेरे को उतार दिया था.
3: अच्छा.
5: तो मेरे को इधर उतार दिया था, बट सी बाद में ये सब चीजें सेकेंडरी हो गई, इन्वायरमेंट कैसा है, ये इनकन्वीनियंस है, ये प्रॉब्लम है, बाद में वो जो रिलेशन हुआ ना वो फिर सब कुछ वही हो गया.
3: okay.
5: फिर उसके साथ उन सारी चीजों में भी मजा आने लगा. मतलब फिर ऐसा लगता नहीं था कि कुछ ऐसा इनकन्वीनियंस है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, हम उसमें ही बहुत सारा इंजॉय करते रहते थे अपना. फिर एजुकेशन लाइक क्लासेज स्टार्ट हुए फर्स्ट ईयर, लाइक फर्स्ट ईयर में आए तो देन अभी इट इज ऑल न्यू, फिर बहुत सारे सब्जेक्ट, फिर ऐसा हम लोग आए तो M1 M2 इज वेरी हार्ड, ड्राइंग इंजीनियरिंग ड्राइंग विच इज वेरी हार्ड, ऐसा हम लोग को ऐसा बताते थे. फिर धीरे धीरे वो स्टार्ट या वंस वी पिक अप देन ऑटोमेटिकली इट फ्लोज स्मूथली.
3: अच्छा. तो आप जैसे तो सौरभ जी जो है वो शायद प्रोडक्शन से थे, आप बाकी सब कंप्यूटर साइंस से थे, तो शायद आपकी दोस्ती जो है वो पहले बन चुकी होगी, बाद में शायद ये आ गए होंगे, ऐसा कुछ हो गया था मिहिर जी?
4: ये हमारे एक साल जूनियर थे, एक साल जूनियर थे, बट हम लोग संजय भी सेकेंड ईयर में ज्वाइन किए थे.
3: अच्छा अच्छा अच्छा. हाँ.
4: बट संजय पांडे और मैं एक ही साथ ज्वाइन किए थे.
3: ओके.
4: बट मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब मैं यहाँ पे आया तो फर्स्ट टाइम मेरे अंकल के साथ मैं आया था, तो यहाँ पे कॉलेज देख के गए थे. फिर घर जाके फिर वापस मैं अकेला आया एंड हम यहाँ पे तो मुझे कुछ पता ही नहीं था बट आई वॉज एक्साइटेड वेरी मच टू मीट पीपल.
3: डायरेक्टली ओडिशा से आए?
4: ओडिशा से आया मैं डायरेक्ट. तो फिर मैं वहाँ पे सोलापुर से हम बस थ्रू वहाँ पे सिद्धार्थ लॉज था तो वहाँ पे हम मैं रुका, एक रूम लिया और मैं डायरेक्टली हॉस्टल आया. यहाँ पे एक ओल्ड हॉस्टल और ये न्यू हॉस्टल. तो ओल्ड हॉस्टल में आने के बाद मेरे को बहुत सारे अपने बैच के बहुत सारे फ्रेंड्स मिले तो वहीं से जर्नी शुरू हुआ. तो उधर फिर कॉन्टैक्ट्स बने, फिर उसके बाद हम हॉस्टल के लिए रूम एलोकेशन, तो यहाँ पे कॉलेज में आए रूम फिर एलोकेशन हुआ, फिर मैं गया न्यू हॉस्टल में मेरा एलोकेशन मिला एंड वहाँ पे मैं देख जैसे मैं एंटर करके जा रहा था तो ऊपर देखा बहुत सारे सीनियर्स खड़े थे और चिल्ला रहे थे ये नया बंदा आ गया, नया बंदा आ गया.
3: थोड़ा सा मुझे थ्री इडियट्स का जो सीन है वो समझ में आ रहा है.
4: बट ठीक है, हम लोग सर नीचे करके गए, फिर रूम में सामान वामान रखा, फिर वहीं से फिर शुरुआत में मतलब पड़ोसी कौन है, दूसरे रूम में कौन रह रहा है, तो ऐसे करके फिर हमने अपना बॉन्डिंग जो है ना वहाँ पे स्ट्रॉन्ग किया. फिर उसके बाद हमें कोई तकलीफ नहीं हुई.
3: अच्छा, क्योंकि ये जो इमोशनल क्वेश्चन है संजय जी के, जैसे इतने दूर से हम आते, जैसे कि आप संजय जी यहाँ पे आए होंगे लेकिन ये नगर से है, थोड़ा सा एक रहता है, लेकिन इतने दूर से आने के बाद एक जो रहता ना कि अटैचमेंट तो दोस्तों से ज्यादा होती है. तो ये कैसे अटैचमेंट आपकी डेवलप हो गई और इसका यानी पढ़ाई के अंदर क्या क्या आपको पॉजिटिव उसके अंदर दिखाई दिया?
6: देखिए मैं तो ये कहूंगा पढ़ाई का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक सुलझा हुआ इंसान बनाने

0: मिहिर पात्राजी, सौरभ श्रीवास्तव, संजय पांडेजी, डॉक्टर संजय वायकरजी हे 1996 ते 2000 या सालातील तेरणा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे विद्यार्थी आहेत. दोघं जण पुण्यामध्ये आहेत, एक जण मुंबईमध्ये आहेत आणि आत्ता जे बोलत होते संजय पांडेजी ते लंडनमध्ये आहेत. तर त्या काळातला जर आपण थोडासा, संजयजी आता तुम्ही प्राध्यापक आहात म्हणून तुम्हाला ते विचारतो, तर त्या काळातली जी शिक्षण पद्धती होती आणि तुमच्या अभ्यासाची पद्धत होती ती नेमकी कशी होती मग?
1: फ्रँकली स्पीकिंग, म्हणजे आता नॉर्मली आता मी सध्या समजा शिक्षण क्षेत्रात आहे तर आता ते तर आपण म्हणजे नॉर्मली हे असं म्हणतो जनरेशन टू जनरेशन व्हॅरी होणारच आणि ऑब्व्हियसली ते होत आहे आणि इट्स अ गुड चेंज. म्हणजे तसं बघायला गेलं तर चांगली आहे. त्याला आपण कसं घेतोय, आत्ताचे विद्यार्थी त्याला कसं घेत आहेत हे पण खूप महत्वाचं आहे. म्हणजे अगोदरचा जो आमचा होता एरा त्याच्यामध्ये जसा हार्ड वर्क होतं, रेफरन्सेस बुकवर जास्त जोर दिला जायचा. आत्ताचे जनरेशन ठीक आहे टेक्नॉलॉजीच्या हिशोबाने ते घेत आहेत, टेक्नॉलॉजीला ते वापरून नवीन हे त्यांचा स्टडी असतो तर दॅट इज ऑल्सो गुड. पण त्यात वाहून न जाता त्या टेक्नॉलॉजीला पॉझिटिव्हली कसं घ्यायचं आणि त्याला एक्सप्लोअर करून तुम्ही कसं शिकायचं हे माझं त्यांना सांगणं असणार. आणि आमच्या याच्यामध्ये आम्ही पण शिकलो, म्हणजे त्यातून आम्ही पुस्तकातून, रेफरन्स बुक मधून, लायब्ररी याच्यामधून सर्वांनी आम्ही रेफरन्स करून असं आमचा अभ्यास करायचो. तेव्हा टेक्नॉलॉजी होती पण एवढी ऍडव्हान्स नव्हती. पण आता हळूहळू आम्ही पण त्याच्यावर मॅचअप झालो आणि आत्ताचा ट्रेंड थोडा वेगळा आहे पण दॅट इज गुड. That is actually nature's call.
0: अच्छा मिहिर जी और सौरभ जी, एक चीज ऐसी है कि जैसे आप इन्होंने कहा कि पढ़ाई में क्या चेंज हो चुका है और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए वक्त के हिसाब से, लेकिन साथ में ये भी है कि आपको जो जॉब मिला, जैसे कि आप सीमेंस में हो या बिल केयर कंपनी में आप हो या कोई भी समझो है, ये तो अभी लेक्चरशिप में है, कौन सी भी कंपनी में जॉब उस वक्त मिलने के लिए क्या क्या तकलीफ आती थी या कुछ ऑब्स्टेकल्स आते थे क्या, और आज कैसी उसकी स्थिति है?
2: सी, जॉब सिचुएशन जैसा था जब हमने पास आउट किए, हमने भी स्ट्रगल किया बिकॉज उस टाइम व्हाट कंपनीज आर लुकिंग फॉर द कैंडिडेट्स, वो हमने एक्चुअली प्रैक्टिस किए बहुत सारे एंड देन फिर हम एंटर किए.
0: शायद कैंपस होता होगा या नहीं?
2: कैंपस नहीं था. सो हमें बाहर से हमें जो स्टैंडर्ड ना कंपनी के थ्रू रेफरेंसेस रिज्यूमे भेजते थे थ्रू फ्रेंड्स, बिकॉज हमारे फ्रेंड्स जो नेटवर्किंग बना था तो उसके थ्रू, और ऑफ साइट बहुत सारे नो दे कॉल पीपल एंड देन सिलेक्ट, बट बेसिकली दैट वाज नॉट द सिलेक्शन, मोस्टली रिजेक्शन ही होता था वहां पे.
0: अच्छा अच्छा. हाँ.
2: तो बट क्या है कि एक जोश था, नहीं हमें बिकॉज नाउ वी आर क्वालिफाइड देन गो फॉर सर्टन थिंग्स. तो हार्डवर्क वहां पे था बहुत सारे, हमें लर्निंग कुछ हम पढ़ाई भी किए एंड देन अकॉर्डिंगली हम अपने आप को तैयार किया कि व्हाट कंपनी इज लुकिंग फॉर द कैंडिडेट एंड अकॉर्डिंगली फिर हमने उस हिसाब से फिर इंटरव्यू दिए. देन सी फेल्यूअर इज ए लर्निंग एक्चुअली. सो sometimes that actually motivates to do something more. तो उसी हिसाब से हमने थोड़ा तैयारी किया and we got job.
0: अच्छा.
2: So once we got job, then life becomes smooth. Then a lot of things we need to adopt in that case. So वो एक बहुत बढ़िया journey and if we talk those memories, it will take one or two days.
0: आपके देखिए ना 22 years की ये जर्नी है, इसको हम दो मिनट में तो ऐसे ही हम सम अप नहीं कर सकते है.
2: right.
0: ये मुझे भी समझ आता, लेकिन एक मैं कुछ गोल्डन वर्ड्स ऐसे चाहता था कि आपको क्या उस वक्त का एक्सपीरियंस होगा. या तो मैं सौरभ जी से भी यही पूछना चाहूंगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि ये जो चीज है जैसे इन्होंने कहा स्ट्रगल की बात है, आपको भी ऐसा कोई स्ट्रगल की बात थी या कुछ था ऐसा?
3: यस, इनिशियली स्ट्रगल था. सो बीइंग अ प्रोडक्शन इंजीनियर उस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो लाइक इंटरनेट ये सब का बहुत सारा इश्यूज था. हम लोग को जो भी अप्लाई करना पड़ता था फिजिकली जाना पड़ता था, कंसल्टेंट के थ्रू जाना पड़ता था. अभी बहुत सारी जॉब पोर्टल्स हैं, आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो. तो वो इनिशियल फेजेज में लाइक उस टाइम बहुत सारा स्ट्रगल था, बट वो स्ट्रगल क्या रहता ना, फर्स्ट जॉब तक ही रहता. फर्स्ट जॉब आपको मिल गई ना, एक बार आपने उसको क्रैक कर लिया और एक बार आप जॉब में आ गए, उसके बाद फिर ग्रोथ के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बट ओनली थिंग है कि आपको अपने आप को उसके हिसाब से अपग्रेड करना पड़ता है कॉन्टिन्यूअसली. विदाउट दैट मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन द इंडस्ट्री. सो आपको उसके हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करते रहोगे तो उसके बाद आगे के अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद आने लगते हैं. सो इनिशियली 3-4-5 ईयर्स देर इज सम

0: थोड़ा सा हार्ड वर्क एंड ये सब रहता है, बट उसके बाद धीरे धीरे धीरे वंस यू सेटल डाउन ना, तो चीजें फिर आपके पास खुद आने लगती हैं. सो वो एक इनिशियल स्ट्रगल के बाद देयर इज अ गुड टाइम.
1: अच्छा, तो संजय जी, पांडे जी, आप तो मतलब ऐसा है कि सबसे ज्यादा ड्रीम तो आपके थ्रू आता है, जैसे कि आप लंदन में 22 इयर्स से स्टे कर रहे हो, तो सभी लोगों का ये रहता है कि इंजीनियरिंग करने के बाद या कोई भी पढ़ाई करो छोटी मोटी, तो हर एक का ख्वाब रहता है कि भाई हम कहीं तो अब्रॉड जाके वहीं पे थोड़ा सा रह ले, या वहाँ की दुनिया का बहुत सारा एक अट्रैक्शन रहता है. तो आप तो 22 सालों से लंदन में हो, तो ये कैसे रहा? क्योंकि आपके तो साथ के जो भी दोस्त है वो कोई तो पूना में स्ट्रगल कर रहा है, कोई तो कंपनी में जॉब कर रहा है, या कोई लेक्चरशिप में जा रहा है, लेकिन आप तो डायरेक्टली आप लंदन पहुंचे.
2: नहीं, मैं डायरेक्टली लंदन नहीं गया था. मेरी भी शुरुआत कुछ ऐसी ही हुई थी. मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाऊंगा. जब हम थर्ड ईयर में थे तो हमारे बहुत सारे और भी फ्रेंड्स थे लखनऊ के, जो अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ रहे थे, तो उनका कैंपस इंटरव्यू वगैरह सब हुआ करते थे, थोड़ी बहुत जानकारी मिला करती थी. जब हम फाइनल ईयर में आए तो हमें मालूम नहीं था कि हम क्या करेंगे इसके बाद. तो मैं, मिहिर, हमारे एक मित्र हैं चरणजीत, तो हम सब ने प्लान किया कि यार देखो जॉब वॉब तो मिल नहीं रही है, चलो थोड़ा और पढ़ लेते हैं आगे. तो हम लोगों ने JNTU का एग्जाम देने की सोची. तो हम सब मिलकर मिहिर के यहाँ गए उड़ीसा, हमने वहाँ से JNTU का एग्जाम दिया, जो कि कुछ खास अच्छा नहीं गया.
1: अच्छा.
2: हाँ, तो उम्मीदें वहाँ भी कम थी, तो मायूस होके अब ना नौकरी थी ना प्लेसमेंट था ना कुछ था, हम लखनऊ लौट गए और एक स्टार्टअप में मुझे उस समय जॉब मिल गई. लकली, तो आई वुड से दैट आई वाज सिंपली लकी. तो मुझे वो जॉब मिल गई एंड आई गॉट अ ब्रेकथ्रू टू बी ऑन साइट एज वेल इन द सेम जॉब, जबकि वो डोमेस्टिक ऑन साइट था. फिर उसके बाद मैं बैंगलोर चला गया, जहाँ मुझे TCS में जॉब मिल गई 3 महीने बाद. और उसके बाद जर्नी अच्छी रही. 1 साल बाद वहां से फिर मुझे 6 महीने के लिए लंदन भेज दिया गया और वो 6 महीने अब तक पूरे नहीं हुए.
1: अच्छा. अच्छा, तो जैसे आप 22 ईयर से लंदन में हो, जो भी आपकी जर्नी रही ये, तो आपको क्या लगता है कि आउटर वर्ल्ड में क्या चल रहा है? क्योंकि आप तो बेसिकली लखनऊ से हो, तो वहां का थोड़ा सा माहौल आपको पता है. आप दिल्ली के आजू बाजू में रह चुके हो, तो आपको वो पता है. आप उस्माद में यानी धाराशिव में आपके पढ़ाई भी की है. आपको क्या लगता है कि आउटर वर्ल्ड में क्या चल रहा है और हम कहाँ पे है?
2: देखिए, आउटर वर्ल्ड, इनर वर्ल्ड, सब हमारे सबका ही बनाया हुआ है. जो सोसाइटी हम रहते हैं, वी आर द वन हु मेक द सोसाइटी. तो मैं ये बोलूंगा कि जहां बताती है सर्वाइवल की या एग्जिस्टेंस की, तो दो ही चार चीजें हैं जो कि आपको हेल्प आउट करेंगी स्टैंड आउट होने में. पहला है आपका कॉन्फिडेंस, दूसरा है आपका कम्युनिकेशन. नॉलेज भी जरूरी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नॉलेज कम भी हो लेकिन आपके अंदर वो शिद्दत तो सीखने की और करने की इच्छा हो मन में, तो आप गोल्स अचीव कर लोगे. तो मेरा एक ही मैसेज है कि बिलीव इन योर सेल्फ, वर्क हार्ड एंड मेक श्योर दैट यू.
1: लैंग्वेज बैरियर कितना आता है?
2: लैंग्वेज बैरियर थोड़ा बहुत आता है, लेकिन अगर वही मैंने बोला ना, आप टूटी फूटी भी इंग्लिश बोलो. जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं इस कॉलेज में जब कल्चरल सेक्रेटरी था तो मुझे मराठी नहीं आती थी, लेकिन मैंने कोशिश यही करी कि जब भी मैं किसी गाने का पहला मुखड़ा बोलू ना, वो चाहे टूटी फूटी मराठी हो लेकिन मराठी में बोलता था, तो उससे अप्रिसिएशन बहुत मिलता था. तो यू कैन कनेक्ट इजिली. सो लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर. अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, फिर भी अगर वेल वर्स नहीं हो, कॉन्फिडेंट रहो, खाली बोलो, लोग समझ जाते हैं.
1: अच्छा,
2: और सब ह्यूमंस हैं.
1: अच्छा, ओके ओके,
2: यू कैन ऑलवेज कन्वे.
1: डॉक्टर संजय वायकर जी, आता जसं की आता यांच्या तिघांचा एक्सपिरियन्स आहे, आणि तुम्ही विद्यार्थ्यांना शिकवतात म्हणून मी शेवटी तुमच्याकडे नेहमी येतोय. तर जसं तुम्ही आता धाराशिवमध्ये शिक्षण घेतलेलं होतं, त्यावेळेस तुमचं स्ट्रगल म्हणजे तुम्ही डायरेक्ट लेक्चरशिपमध्ये गेलात का, हा पहिला मुद्दा आहे. आणि दुसरा मुद्दा असा आहे की जर आता तुम्ही विद्यार्थ्यांना शिकवताय, तर हे जे काय यांचा एक्सपिरियन्स सांगतायत, आजच्या विद्यार्थ्यांमध्ये तुम्हाला तसा काय फरक दिसतो का मुंबई आणि धाराशिव या दोन्हीच्या मध्ये जर तुलना करायची म्हटलं तर?
3: स्पेसिफिकली म्हणजे असं सांगायचं झालं, आता पहिला माझा पहिला प्रश्न सांगतो मी, की मला पण स्ट्रगल झाला. असं नाही की आणि मी डायरेक्टली नाही डिसाईड केलं की आय हॅव टू गो टू की लेक्चरशिप. पहिला 1 वर्ष मी मार्केटिंगमध्ये केला जॉब, ठीक आहे, तेव्हा थोडा स्लॅकडाऊन आला आणि नेमकं हे होतं. मग मार्केटिंगचं मी जॉब केल्यानंतर मग सडनली वन ऑफ माय फ्रेंड हे ऑलरेडी जॉईन, तर त्यांनी मला बोलवलं की तुम्ही मग एक पॉलिटेक्निक कॉलेजमध्ये मी जॉईन केलं आणि तिथे मग मला आवड लागली. म्हणजे मग माझा तो एक तुम्ही सांगू शकता की एक माणसाचं हे असतं की त्या तो बॅकग्राऊंडचाच त्यासाठी बनलेला आहे अशा टाईपने मला ते आवडायला लागलं, मला आवड निर्माण यातून आय कंटिन्यूड. आता तुम्ही सेकंड क्वेश्चन जो विचारला की आत्ताचा समजा हे म्हणजे तिकडचं म्हणजे मुंबईचे, हा समजा ऑल ओव्हर किंवा मुंबई स्टुडंट किंवा इकडे धाराशिवचे स्टुडंट, असं काही आता ऍक्च्युली बॅरियर राहिलंच नाही खरं बघायला गेलं तर. हा, तुम्ही जर म्हणलात की फक्त एक जो न्यूनगंड असेल, आता तुम्ही जर बोललात की गावचा एखादा स्टुडंट आहे की एक रुरल एरियामधून येणारा स्टुडंट आणि त्याने जर न्यूनगंड पाळला मनामध्ये की नाही मी करू शकत नाही किंवा मला बोलता येणार नाही किंवा मी प्रेझेंट करू शकणार नाही, तर तो त्याचा हे असेल डिसअडवांटेज किंवा मग त्याचा स्वतःचा हे असेल म्हणजे परसेप्शन, त्याने तो जर बाळगला नाही तर वर्ल्ड इज ओपन, म्हणजे पूर्ण प्लॅटफॉर्म सगळे ओपन आहेत आणि त्याचं पण नॉलेज तेवढंच स्टँड करतंय मार्केटमध्ये. तो कुठेही गेला तो रिप्रेझेंट केला स्वतःला तर ऑब्व्हियसली सगळेजण त्याला वेलकम करणार आहे, तो न्यूनगंड नाही.
1: आता हे तुम्ही जसं आता म्हणजे कुठला महाराष्ट्र येतो, उत्तर महाराष्ट्र येतो ना इकडला आपला, हा तर उत्तर महाराष्ट्रातून आता हे झालं मराठवाडा समजा, मुंबई समजा, तर मग तुम्हाला असं वाटतं का की हा न्यूनगंड जो आहे मराठवाड्यातल्या मुलांमध्ये जास्त आहे रादर द्यान जर आपण मुंबईच्या जर पाहिले, कारण मुंबईचे जास्त एक्सप्रेसिव्ह असतात, थोडस ऍडव्हान्स नॉलेजचे असतात किंवा काय व्हॉट एव्हर मे बी काय असेल, तर तुम्हाला
3: सराउंडिंग मुळे आपण बोलू शकतो. पण इट इज नॉट की फक्त
1: अकॅडमिकली असा काही विषय,
3: हा अकॅडमिकली तसं, म्हणजे तुम्ही जर पर्टिक्युलरली म्हणलं की धाराशिवच्याच किंवा उत्तर महाराष्ट्र पश्चिम महाराष्ट्र कोणत्याही रुरल एरियामध्ये का असतं, कारण ते स्वतःला असं बांधून घेतात स्टुडंट की नाही माझा हा बॅरियर आहे किंवा मेट्रोपॉलिटन सिटी आहे असं आहे तिकडे तसं आहे त्यांना ठीक आहे बॅकग्राऊंड आहे, तसं काही नसतं. तुम्ही इथे आहात, तुम्हाला पण तीच टेक्नॉलॉजी शिकवली जाते, तुम्ही ती कशी घेत आहेत आणि तो न बाळगता तुम्ही स्वतःला कसं कॉन्फिडेंटली प्रेझेंट करताय, दॅट इज इम्पॉर्टंट.
1: अच्छा अच्छा,
3: सिम्पली.
1: अच्छा, तर ही एक खूप चांगली गोष्ट आहे आणि याच्यातून सुद्धा आपल्याला काही पुढे अजून गोल्डन वर्ड्स घ्यायचे आहेत. पण परत एकदा मी आप सभी को मैं फिर से एक बार 1996, 1997, 1998 में लेके जाना चाहूंगा. जैसे कि सौरभ जी तो प्रोडक्शन के थे, आप सभी कंप्यूटर साइंस के थे, तो आप सौरभ जी को ऐसा कुछ बोलते थे कि यार आपके क्लास में तो हरियाली ही नहीं है?
0: हाँ बोलते थे ना
3: ऐसा कुछ है,
0: बोलते थे
2: नहीं? हाँ, ये तो अभिशाप था इन लोगों.
1: अच्छा, हाँ तो उस वक्त की ये जो आपकी फ्रेंडशिप रहती थी हर एक समझो लड़कियों के साथ हो या लड़कों के साथ हो, तो क्या होता था उस वक्त ऐसा फ्रेंडशिप में? जैसे कि समझो आप कोई कैंपस में घूम रहे हो, कई लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसा या लेन देन जो है आदान प्रदान जो बोलते हैं सोच का या विचारों का क्या होता था, क्योंकि पूरा इंडिया तो यहाँ पे बसता था, ये इस बात को तो आप मानेंगे.
2: एब्सोल्युटली एग्री करता हूँ आपकी बात से, लेकिन रेशियो इतना खतरनाक था कि 100 पे 1 वाला समझ लीजिए.
1: अच्छा,
2: तो वही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोलते हैं, तो वही सब चीजें हुआ करती थी, तो अपॉर्चुनिटीज बहुत कम रहती थी. लेकिन हाँ, अच्छा माहौल था. और जैसे मैंने कहा कि हम कंप्यूटर
1: थोड़ा सा माइक,
2: जैसे मैंने कहा कि हम कंप्यूटर्स वालों के डिपार्टमेंट में ज्यादा लड़कियां रहती थी, लेकिन मेजोरिटी जो है वो सब प्रोडक्शन वालों के साथ ही रहती थी.
1: अच्छा,
2: अच्छा माहौल था.
1: अच्छा, आप कैसे ब्राइट स्टूडेंट थे? आप जैसे तो आप चारों दोस्त यहाँ पे हो, तो आप ब्राइट स्टूडेंट थे या कैसे थे? आपको मतलब
2: ठीक था,
4: एवरेज
2: 4 साल में इंजीनियरिंग कर ली तो उससे ठीक ही.
1: अच्छा अच्छा, हाँ हाँ,
0: वो भी बहुत बड़ा मतलब टारगेट हुआ करता था.
2: जब हम लोग नए नए आए थे तो सबसे ज्यादा यही डर लगता था कि कुछ लोग दिख जाते थे जो लगता था कि शायद प्रोफेसर हो, कुछ लोग ऐसे दिख जाते थे जो लगता था शायद प्रोफेसर है या हो सकते हैं प्रिंसिपल भी हो.
1: अच्छा,
2: बाद में पता लगता था ये
1: स्टूडेंट है
2: क्योंकि वो 7-8 साल से उसी क्लास में थे. ऐसे एक्सपीरियंस के बाद तो हमें यही लगता था कि डिग्री हो जाए, क्योंकि मैं सच बोलूंगा फिर से एक बार, हाँ
1: हाँ,
2: कि सेकंड थर्ड ईयर तक तो मुझे ये भी नहीं पता था कि हम ऐसा क्या करेंगे कोई हमें पैसे देगा, क्योंकि बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि इसके बाद करना क्या है. तो उसके बाद और जैसे थर्ड ईयर फाइनल ईयर किया, उसके जॉब में चले गए, आज काफी प्राउड फील होता है और क्रेडिट गोज टू द कॉलेज, क्योंकि आई थिंक कुछ तो ऐसी क्वालिटीज थी जो हमने इनकलकेट करी अपने अंदर डेवलप करी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और जिसकी वजह से हम आज एक ठीक ठाक मुकाम पर हैं जहां पे हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं. तो क्रेडिट गोज टू द कॉलेज,
1: अच्छा,
2: क्योंकि फाउंडेशन वही है. और मैं सच बोलूंगा कि इंजीनियरिंग के बाद मुझे करीब 12-13 साल लग गए दोबारा कुछ और पढ़ाई करने के लिए. आई डिड MBA इन लंदन, लेकिन उसको मैंने 13-14 साल बाद किया था, और बाकी जो टेन्योर है सर्वाइवल का वो इस कॉलेज की दौरा करी हुई इंजीनियरिंग के सहारा ही कटा है.
1: अच्छा, जैसे कि मैं इसी से लेके आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर भी उतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी है. तो जैसे पुणे में रहते आप लंदन में रहते हो, तो आपको लाइफस्टाइल के हिसाब से या कुछ हिसाब से आपको कुछ अलग लगता है कि आप कुछ अलग जीवन जी रहे हो और ये कुछ अलग जी रहे हैं?
2: इंडिया इज शाइनिंग. अभी वो सब जो डिफरेंसेस थे चले गए.
1: अच्छा,
2: अभी तो यहाँ पे क्या नहीं मिलता. हम कल ही मेहर के साथ इनके मॉल में गए, तो ऑलमोस्ट जितनी शॉप्स हम देखते हैं लंदन में सारी यहाँ है. मैं ये बोल सकता हूँ ये बेहतर जीवन बिता रहे हैं क्योंकि इनको यहाँ मेड मिल जाती है, हमें लंदन में मेड्स नहीं मिलती.
1: अच्छा,
2: तो वो और दिक्कत वाली बात है. और बाकी सब तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, इनको वेदर भी अच्छा मिलता है, हमारा तो वेदर भी खराब रहता है. तो जैसे मैंने बोला कि इंडिया इज शाइनिंग, अभी तो सब बढ़िया है यहाँ पे।
1: अच्छा देखिए, आपके लिए तो ये प्राउड मोमेंट है।
0: yes, yes,
1: और मिहिर जी, मैं ये अभी ये आपके जो चारों की दोस्ती है और आपके बाकी भी कोई बैचमेट या फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये बॉन्डिंग के अंदर ऐसी क्या चीजें हैं जो कि आज भी आपको बांधे हुए रखी हुई है? क्योंकि आप ऐसा थोड़ा सा इमेजिन कर लीजिए कि अगर उस टाइम आपके हाथ में मोबाइल या स्मार्टफोन रहता था तो क्या आपकी भी फ्रेंडशिप ऐसी रह सकती थी क्या?
2: कंप्लीटली एग्री करता हूँ। जो उस समय की जो शॉर्ट कमिंग थी ना, वो ब्लेसिंग डिस्गाइज थी, क्योंकि हमारे पास ये मोबाइल वोबाइल डिजिटल चैनल्स नहीं थे। हाँ। तो जो कुछ होता था, हम ह्यूमन टच था, हम खुद बातचीत करते थे, समय बिताते थे, जो कि आज गायब हो गया है।
1: अच्छा,
2: इतने सारे चैनल्स बन गए हैं, इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जरूर आप मेंबर 50 ग्रुप के होंगे, लेकिन अगर आप उनमें से 4-5 के नाम के अलावा जानते भी नहीं कौन है। तो मैं बोलूंगा कि वो ज्यादा अच्छा एरा था, और उस एरा की जो बॉन्डिंग है, योरसेल्फ की, 22 साल बाद भी हम लोग आज वही पुरानी बातें कर रहे हैं, और वो बॉन्डिंग है। तो आई थिंक जो फाउंडेशन
1: आपका मेयर कैसा एक्सपीरियंस है इसके अंदर?
4: जैसे पांडे जी ने बताया कि हम लोगों का जो है अभी क्या है ना, कि आप 5 मिनट आपको ब्रेक मिलता है ना, यू ओपन द मोबाइल एंड सी कि किसका मैसेज आया है या कुछ न्यू टॉपिक आया है। बट उस टाइम तो ऐसा कुछ नहीं था, एवरीथिंग हम सिर्फ डिस्कशन के थ्रू, म्यूचुअल नो डिस्कशन, कोई टॉपिक हो या कुछ, इवन इफ हम हंसी मजाक करते थे तो भी वो साथ में बैठ के ही करते थे, राइट? सो वो एक वो जो एरा था ना, वो एक मतलब एक जो आजकल नहीं दिखता, मतलब पर्सनली जो है ना बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग था। आज वो हम बोलते हैं बॉन्डिंग, बट वो ऐसा नहीं है, बिकॉज पीपल आर मोर इन्वॉल्व इन द आउटसाइड डिमांड बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल स्पेंड ऑन दैट। बट वो जो मेमोरीज की पर्सनल टच, जैसे पांडे जी ने बताया कि पर्सनल टच से उसका अभी तक वो रिफ्लेक्शन है, राइट? जो आजकल के मुझे ऐसा लगता है कि हम फ्रेंड्स बनाते हैं, बट दैट इज समथिंग शॉर्ट लिविंग, इट्स नॉट नो लॉन्ग लास्टिंग, राइट? सो वो जो पर्सनल टच था, म्यूचुअल नो आमने सामने बैठ के डिस्कशन, वो बॉन्ड अभी भी कंटिन्यूटी है और आगे भी चलता रहेगा लाइफ लॉन्ग।
1: अच्छा, सौरभ श्रीवास्तव जी, जैसे इसी को थोड़ा सा आगे और लेके जाना चाहूंगा, जैसे कि आप गोरखपुर से थे तो आपको लेटर आता होगा, तो आप यानी फैमिली से लेटर आता होगा, तो आप राह देखते होंगे कि यार मेरे घर से लेटर आ रहा है, तो वो जो है वो
0: नहीं सर, वो
1: जो मोमेंट्स आप नहीं दिखाई देते जैसे कि मोबाइल
0: से। सो एक्चुअली लेटर तो नहीं आता था उस टाइम पे, ड्राफ्ट का इंतजार करते थे हम लोग, वो महीने में एक बार आता था। लेटर नहीं आता तो हम लोग को क्या, कॉल करते थे। तो पीसी होता था इधर और हॉस्टल में फोन लगे हुए थे, तो सबका टाइम स्लॉट फिक्स था, तो उस टाइम पे घर से फोन आता था, अदरवाइज हम लोग इधर पीसीओ से जाके कॉल करते थे। सो वो हम लोग जब कॉल करते तो लाइन लगती थी, नॉर्मली लाइन लगी अपना उधर अंदर, जो हम लोग ठहराते थे ज्यादा देर हो गई तो भाई बाहर निकल, हमको भी बात करनी, हमारा भी टाइम दे रखा है हमने। सो वो सब मेमोरीज थी। बट एक चीज है कि वो 4 साल जो हम लोग ने बिताए ना, मतलब उसमें कुछ फॉर्मेलिटी नहीं होती थी। हम लोग रहते थे, हमें सब डोर खुले रहते थे, मतलब ये नहीं कि इसका रूम है, वो उधर आके बैठा है, वो उधर आके बैठा है, वो उधर गप मार रहा है, वो इधर बैठा हुआ है। सो वो 4 साल जो साथ रहे ना, वो बॉन्डिंग जो क्रिएट हुई ना, वो दैट इज बिकॉज इतना टाइम हमने और किसी के साथ बिताया नहीं। 4 साल एक साथ रहना और कोई फॉर्मेलिटी नहीं, मतलब ये नहीं कि, और एक चीज और रहता था, जहां सीनियर मिल गए फिर पैसे नहीं खर्च करने का।
1: अच्छा अच्छा,
0: ये बहुत समय का बहुत, मतलब आई डोंट नो बट अभी क्या चल रहा है, बट उस टाइम पे तो ऐसा रहता था, सीनियर है ना साथ में, मिल गया कहीं कुछ, अच्छा रैगिंग ली, चलो कहीं दिख गया, चलो पहुंच गया, हाँ सर, सर झुका के खड़े, हाँ भाई क्या खाओगे।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो वो सब कर करके वो एक, मतलब ऐसा बॉन्ड डेवलप हो गया ना कि विच इज लाइक, हम लोग आज भी इतने टाइम बाद मिल रहे हैं, बट कभी ऐसा लगा नहीं। वो आज भी लगता है कि वो पीछे वाली ही बात है, अभी जस्ट 2 दिन पुरानी तो बात है, हम डिग्री करके इधर से निकले थे। सो वैसा ऐसा, मतलब काफी लोग के साथ ऐसा डेवलप है। आज की डेट में ऐसा है कि कहीं पे भी रहो ना, अगर उस्मानाबाद वर्ड सुना ना तो आदमी रुक जाता है एक बार। अच्छा उस्मानाबाद, मैं भी 4 साल जूनियर, मैं भी हो सकता हम जब निकल गए उसके बाद का कोई हो, बट वो एक इस जगह से ऐसा लगाव हो गया है ना कि वो अपने आप उस्मानाबाद बोला ना तो एकदम थोड़ा सा एक,
1: क्योंकि ये मैं क्यों जानना चाहता था, क्योंकि आज अगर मैं यहाँ पे कॉलेज कैंपस में देखता हूँ तो चार पांच दोस्त बैठे हुए हैं और वो अपने अपने मोबाइल में सर नीचे झुका के बैठे हुए हैं, तो एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं, इमोशनलिटी कम हो गई है, ऐसा यहाँ पे तो दिखाई देता है. संजय वायकर सर त्याला अजून थोडस एक्सप्लेन करून व्यवस्थित सांगू शकतील. तर हा जो इमोशन आहे, आता आपकी शादी भी हो चुकी होगी, आपके बच्चे भी होंगे, तो शायद आप इसको महसूस करते होंगे कि शायद ये नहीं हो रहा है आजकल के जनरेशन में. क्योंकि एक मैंने ऐसे ही यहाँ के स्टूडेंट से सुना हुआ था कि मिलेनियल जनरेशन और जेन जी जनरेशन ऐसा कुछ तो है, और उस जनरेशन के अंदर ऐसे कुछ इमोशन को अगर कुछ वैल्यूज नहीं है तो ये कैसे फिर आगे लाइफ जाएगा. सर तुम्ही तर टीचर आहात त्यामुळे
3: ऍक्च्युअली हा क्वेश्चनच एवढा डिफिकल्ट आहे ना की त्याला तुम्ही कसं एक्सप्लेन,
1: कोणावर म्हणजे कोणावर आता हे कसं म्हणजे आपण कसं सांभाळायचं, कारण आता आपण समजा एकाच,
3: म्हणूनच त्याला म्हणजे असं मला माझं पर्सनल मत असेल की लेट टाइम डिसाइड की तुम्ही टाइमवर सोडून द्या ते.
1: अच्छा
3: असं म्हणजे का, तर काही गोष्टींचा ऍडव्हान्टेज पण आहे, काही गोष्टींचा डिसएडव्हान्टेज पण आहे. तर जसं मी अगोदर बोललो की ठीक आहे आता समजा काळाची गरज असेल ती, तर म्हणून ती टेक्नॉलॉजी अडॉप्ट करायची आहे. पण मग आता जर तसं बघितलं तर समजा इमोशन्स आपण पूर्णपणे नाही म्हणू शकत किंवा नाहीच राहिले किंवा मग तो टच नाही राहिला, पण मग कसा आणायचा तर त्याच्याबद्दल आपण विचार करू शकतो की समजा मग तो कसा आणायचा, त्याच्यावर ब्रेनस्टॉर्मिंग झालं पाहिजे. समजा ते मिसिंग आहे तर मग ते कसं आपण करू, मग ते आता आपल्यासारख्यांनी आम्ही आता हे सांगतोय समजा जीव तोडून की नाही बाबा हा तसा काळ खूप छान होता, मग आताच्या जनरेशनला पण वाटलं पाहिजे हा आपण पण का नाही विचार करू तसा एक स्पेंड करायचा टाइम, वाय नॉट. समजा फॉर एक्झाम्पल कॉलेज स्टुडंट आहे, तर मग कॉलेज स्टुडंट आलं तर मग ते मोबाईल ठेवा तुम्ही घरी, आपण कॉलेजमध्ये चाललोय तर कॉलेजचं आता ह्या ऍट प्रेझेंट वी आर गोइंग टू एन्जॉय दॅट टाइम,
1: म्हणजे हे सेल्फ रिअल.
3: हा यस करेक्ट.
1: अच्छा
3: म्हणजे असं समजा आम्ही सांगतोय, माझं दुसऱ्यांच्या याच्यावरून पण आपण शिकलं पाहिजे, हे एक समजा माझं सोल्युशन झालं, असं प्रत्येकाने शेअर केलं तर सापडू शकतो एखादा मार्ग.
1: बरोबर,
3: असं माझं मत आहे.
1: क्योंकि आजकल जनरेशन इमोशनल बॉन्डिंग, माता पिता के साथ कैसे रहना, ये समय में नहीं आता, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम हमारे बच्चों को सिखाए कि ये मॉरल वैल्यूज क्या है. तो इसके हिसाब से मैं वहां हमेशा आपके जनरेशन के जब भी आते 90 के पहले 90 या 96 या 2000 के, तो आपके अंदर जो इमोशंस है वो आज नहीं दिखाई देते, तो वो भी थोड़ा सा जरूरी है आज के जनरेशन के लिए, इसे मैं पूछना चाहता था. फिर से एक बार मैं एंड में ये पूछना चाहूंगा कि ऐसे क्या गोल्डन वर्ड्स है आपके लाइफ के, आपके पूरे थ्रू आउट लाइफ के जर्नी के, कि आपकी शादी भी हो चुकी है, अब आप आपके बच्चे भी है, आप फिर से एक बार उसी दौर में आ चुके हो 1996 के, तो आपको क्या लगता है कि लाइफ को आसान करने के लिए या लाइफ को सक्सेसफुल करने के लिए ऐसे क्या गोल्डन वर्ड्स है जो आप सभी कहना चाहोगे
4: प्लीज. मैं कहूंगा,
1: हाँ, उसके पहले थोड़ा सा और एक मैं इसको ऐड करना चाहूंगा कि आपने कहा था कि कल्चरल कमेटी के भी आप सेक्रेटरी थे, तो उस टाइम कल्चरल एक्टिविटीज क्या होती थी और आप क्या क्या करते थे लास्ट गोल्डन वर्ड से पहले.
2: सो उस समय काफी कुछ हुआ करता था, स्किट्स होती थी, सॉन्ग्स होते थे और ड्रामास वगैरह भी होते थे, तो मैं मोस्टली एंकरिंग करता था.
1: अच्छा,
2: मैं एंकरिंग करता था और मेरे साथ में चरणजीत भी थे, तो वो भी एंकरिंग किया करते थे. डांस परफॉर्मेंस हुआ करते थे, तो अक्रॉस इयर्स लॉन्ग करते थे. हमारा वो मेन इवेंट होता था साल का, और उससे पहले हमारे एनुअल सोशल गैदरिंग के सारे इवेंट स्पोर्ट्स हुआ करते थे. तो दैट वाज लाइक वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल इवेंट ऑफ द ईयर.
1: अच्छा, लेकिन आप सभी इसमें पार्टिसिपेट करते थे. उस टाइम तो आप हीरो ही होते होंगे. तो वो तो
4: अपना और एक फ्रेंड था चरणजीत, ही वाज द प्रेसिडेंट, राइट, जनरल सेक्रेटरी एंड ही वाज द कल्चरल.
1: क्योंकि ऐसे एक बैच के शायद उन्होंने कहा था, वो सैम पैट्रिक वगैरह आए थे उस टाइम, क्लेमन पैट्रिक और क्या, हाँ, तो उनका तो ऐसा कुछ तो था. तो उन्होंने ऐसा कहा था कि उस टाइम सिलेक्शन होता था, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करना चाहते थे. आज तो शायद ऐसा नहीं होता होगा, तो ऐसा कुछ आपने कुछ कहीं कुछ पार्टिसिपेट किया था उस वक्त.
4: हाँ, यहाँ पे तो कॉलेज में जो अपना चार साल में हमने फर्स्ट ईयर आई थिंक पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स हमने पार्टिसिपेट किया था कुछ ना कुछ एक्टिविटीज. एंड फाइनल अपना फेयरवेल में हमने
1: फिल्में वगैरह उस टाइम देखते थे. क्या था,
2: अरे वो तो सोलापुर
4: जाते थे,
2: एक रात में तीन पिक्चर देखते.
1: अच्छा,
4: हाँ, क्योंकि वो ऐसा था कि हम महीने में एक या दो बार जाते थे, तो फिर वो कोटा पूरा.
1: अच्छा,
4: तीन
2: हमारे एनुअल सोशल गैदरिंग का फुटबॉल मैच में शायद अभी के प्रिंसिपल साहब रेफरी थे.
1: अच्छा माने सर, अच्छा अच्छा हाँ अच्छा अच्छा, तो ये जो अभी आप क्या कहना चाहोगे? फिर मैं जो पहले क्वेश्चन पूछा था कि गोल्डन वर्ड्स क्या ऐसे होंगे कि जो कि लाइफ को आसान भी बना सके, सक्सेसफुल भी बना सके?
4: मैं ये कहूंगा कि जो मैंने लर्निंग की है मेरे लाइफ में, दैट्स अ डिसिप्लिन लाइफ, डिसिप्लिन व्हाट एवर यू डू बट मेंटेन द डिसिप्लिन, एवरीथिंग विल गो योर वे. सो आई मीन आप खाना भी खाते तो एक डिसिप्लिन वे में भी खाना है, कौन से टाइम में खाना है, स्टडी करना है, अदर एक्टिविटीज आपको फिजिकल एक्टिविटीज करना है, तो ये एक लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. अगर आप फॉलो करोगे डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन लाइफ एंड लॉट ऑफ आई मीन यू नो मेमोरीज इफ यू गो अलॉन्ग व्हाट यू डिड इन द पास्ट एंड नो फ्यूचर में आपको बहुत सक्सेस मिल
1: सकता है. जी सौरभ जी, अभी ये मिहिर महापात्रा जी ने आपको ये गोल्डन स्वर्ड दिया, अभी सौरभ जी के पास जाएंगे.
0: तो मिहिर सर की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं बोलूंगा कि लाइक ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स.
1: ओके,
0: बिकॉज क्या होता है कि बहुत टाइम जब हमने भी इनिशियली बहुत सारे फेलियर्स देखे, उस फेलियर्स को अगर वहां पे हम थोड़ा सा अगर रुक जाते या थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा होता था तो आगे बढ़ने के लिए बहुत मुश्किल होती थी. बट उस फेलियर से हम लोग सीखते गए, इंटरव्यूज देते गए, फेल होते गए, बट वो नई लर्निंग्स आती गई, वो सीखते गए. एंड आज भी ऐसा नहीं है लाइक कि आज भी सीख ही रहे हैं. इट इज़ नॉट कि एवरी डे कुछ ना कुछ सीखते हैं. एंड एक चीज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी से भी सीख सकते हो. लाइक आपके ऑफिस में एक प्यून से लेकर आपके हेड ऑफ द कंपनी से लेकर आप सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. और हमको सबसे कुछ ना कुछ जो अच्छा सीखने को मिल रहा है उससे सीखना ही चाहिए हम लोग को. मतलब लाइक ऑफिस में मैं देखता हूँ हमारे प्यून है, अभी इतने लोग चाय पीते हैं, कौन सा बंदा क्या चाय पीता है? कोई ग्रीन टी पी रहा है, कोई लेमन टी पी रहा है, कोई कॉफी पी रहा है, कोई विदाउट. बट जब भी वो आएगा ना, आपको उसको बोलने की जरूरत है. मीटिंग में 20 लोग भी बैठे ना तो सबके सामने लाके वही चीजें रखता है.
1: यस यस,
0: सो वो डेडिकेशन है उसके काम का, लाइक एंड ही नोज हिज वर्क, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
1: यस यस. संजय पांडे जी, वैसे तो जैसे ही इंजीनियरिंग खत्म हो या इंजीनियरिंग को एडमिशन लिया जाए तो मुझे अमेरिका जाना है, जर्मनी जाना है, लंदन जाना है, यही ख्वाब रखना चाहिए, क्या करना चाहिए?
2: मेरे ख्याल से तो एंजॉय करना चाहिए अपने विचार से.
1: अच्छा अच्छा.
2: क्योंकि उसके बाद एक बार आप जॉब में चले गए तो फिर वो साइकिल स्टार्ट हो जाता है. जॉब मिल गई, फिर शादी हो जाएगी, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर वो फेस कभी खत्म नहीं होगा. तो आई वुड सजेस्ट कि एंजॉय द प्रेजेंट, जो भी है, जैसे भी सर्कमस्टांसेस हो, सिचुएशन हो, एंजॉय करो, हार्ड वर्क करो एंड ट्रस्ट योरसेल्फ.
1: ओके,
2: बाकी फ्यूचर विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ.
1: अच्छा. आणि डॉक्टर संजय वायकर जी, आपण सर आहात आणि यांनी सगळ्यांनी गोल्डन वर्ड सांगितले, ते तर आपल्याला दररोज सांगावं लागतात, तर आपण काय सांगणार?
3: तर मी फक्त हे सांगेल की मी हे समअप करेल आणि त्यात माझं एक ऍड करेल की कारण ह्या सर्वांचा निचोड आहे ते.
1: अच्छा.
3: मला सांगायचं ते आणि ते सर्वजण केलंच पाहिजे सर्वांनी की डिसिप्लिन वे पाहिजे लाईफ मध्ये.
1: बरोबर आहे.
3: लाईफ लॉंग लर्निंग पाहिजे
1: हो,
3: आणि प्रेझेंट मध्ये राहिलं पाहिजे, एन्जॉय केलं पाहिजे.
1: एक्झॅक्टली.
3: आणि माझा एक ऍड करेल त्यामध्ये की राईट ऍटिट्यूड,
1: दॅट
3: इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट.
1: अच्छा अच्छा.
3: प्रत्येक गोष्टीसाठी तुमचा ऍटिट्यूड
1: असला पाहिजे. अच्छा अच्छा,
0: व्हेरी इम्पॉर्टंट.
1: आणि आता सगळ्यात शेवटी, म्हणजे सबसे आखिर में, ऐसा कौन सा सॉन्ग है, ऐसा कौन सा गाना है जो आपके दिमाग में आ रहा है अभी उस जर्नी का, या 1996 से लेकर 2000 तक?
2: केके का सॉन्ग है पल. हाँ. कल हम यहाँ रहे ना रहे. हाँ. याद आएंगे वो पल.
1: अच्छा अच्छा अच्छा. ये आप सभी भी उसे
4: पुरानी जीन्स वो सॉन्ग था ना,
0: पुरानी जीन्स.
1: हाँ, पुरानी जीन्स से गाना था. हाँ बराबर है.
0: और मूड के ऊपर भी बहुत सारे डिपेंड करते थे, फिर कब जगजीत सिंह सुनना है कब.
1: हाँ हाँ
3: हाँ. मी जेव्हा पण, कारण मी जे ऍक्ट केलेलं आम्ही सर्वांनी, त्याच्यामध्ये प्ले केलेला रोल फायनल इयरला, त्यामुळे ते गाणं माझ्या आता पण म्हणजे डोक्यामध्ये आहे. आणि तुम्ही जसं बोललात की ह्या कॉलेजची लगेच आठवण देते किंवा इथं आल्यानंतर, तर आणि नेहमी आम्ही त्या गाण्यावर असं हे करायचं, ते गाणं जस्ट वोकली माया था ए क्या बोलती तू.
1: अच्छा.
3: अँड दी अदर वन.
1: अच्छा.
3: फ्रॉम दॅट
2: सत्या
3: सत्या आपली
1: सत्याचं
3: दॅट वॉज.
4: तभी से उसका नाम भाऊ हमने रखा.
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा. ओके ओके. तर मिहिर महापात्राजी, सौरभ श्रीवास्तवजी, संजय पांडेजी आणि डॉक्टर संजय वायकरजी. मिहिर महापात्राजी आहेत ते ओडिशापासून, ओडिशा इथून आहेत बेसिकली आणि पुणे इथे सध्या सिमेंट्स कंपनीमध्ये जॉब करत आहेत. सौरभ श्रीवास्तवजी गोरखपूरमधून आहेत, जे आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगीजी जे आहेत त्या गोरखपूर या क्षेत्रातून येतात, ते पण पुण्यामध्ये आहेत सध्या. संजयजी पांडे हे लखनौमधून आहेत आणि ते लंडनमध्ये आहेत आणि डॉक्टर संजय वायकरजी हे अहमदनगर इथून येतात बेसिकली आणि सध्या MGM कॉलेज मुंबई इथे प्राध्यापक आहेत. मैं आप सभी का सही तो और भी बहुत बातें करना चाहता हूं मैं वैसे तो, लेकिन हमारी बातें होती होती अभी लगभग आधा पौन घंटा पूरा हो चुका है. तो ये आपके जो मेमोरीज है ये हमारे लिए बहुत चेरिश करती है और हमको एक एनर्जी देती है, क्योंकि हमारे भी लाइफ में ऐसे कुछ पल्स आते हैं जो कि हमको लगता है कि यार नहीं, हम कहीं तो डिप्रेशन में है या हम कहीं तो लो फील कर रहे हैं, लेकिन जैसे आपके एक्सपीरियंस हम सुनते हैं तो लगता है नहीं, लाइफ बहुत अच्छी है और आगे जाना चाहिए. तो ये जो आपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है हमारे लिए भी बहुत एनर्जेटिक है, सुनने वालों के लिए तो काफी है. तो आपका मैं बहुत शुक्रिया और
2: थैंक यू वेरी मच एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट.
1: थैंक यू. आणि आपण ऐकत रहा रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज. श्रोते रेडिओ तेरणा ठेवून करा 90.4 FM वर, किंवा आपण अँड्रॉइड फोन किंवा ॲपल फोन वापरत असाल तर गुगल प्ले स्टोअर किंवा ॲप स्टोअरवर रेडिओ तेरणा हे ॲप उपलब्ध आहे. आपण रेडिओ गार्डनवरही रेडिओ तेरणा ऐकू शकता, त्यासाठी पृथ्वीच्या ग्लोबवरील उस्मानावाला जर टच केलं तर आपल्याला ऐकायला येईल केवळ रेडिओ तेरणा, किंवा आपण http://radio.coeusmanabad.ac.in या वेबसाईटला भेट देऊन ऐकू शकता रेडिओ तेरणा. आपण आमच्या फेसबुक पेज आणि इंस्टाग्रामला लाईक करा, फॉलो करा, तसेच आपल्याला हा कार्यक्रम कसा वाटला ते जरूर कळवा. त्यासाठी व्हॉट्सअप क्रमांक आहे 9970500, 9970500000. ऐकत राहा, नंदी राहा रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज.

0: आपण ऐकताय रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज, सुरेल संगीत, विविध घडामोडी, शेती, महिला, युवक यांचं व्यासपीठ, सुरेल संगीताचा नजराणा. ऐकत रहा, आनंदी रहा, रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज.
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे. हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है. साथ ही प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है. हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह.
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है.
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी.
0: संगीत आपल्या मनाचा आरसा, संगीत आपल्या मनाचा संवाद, गाणी जी साकवतात आपल्या मनातील भावनांचे तरंग, हृदयस्पर्शी गाणी, मन स्पर्शून जाणारी गीत, साद घालणारे आवाज, ऐका आमच्या हिंदी चित्रपट संगीताच्या कार्यक्रमातून. ऐकत रहा रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज. ऐकत रहा, आनंदी रहा.

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: तो देखने दो,
1: जल भी रहे हैं।
0: अरे तो जलने दो,
1: खुली सड़क है बाबा।
0: तो क्या हुआ भाई?
1: हाँ तो हो जाए
0: हो जाए।

0: अरे हाँ वो चोर की शक्ल है गोरी।
1: तो क्या हुआ?
0: हो गया मिलना बहुत जरूरी।
1: चल पगले,

0: है पसीना।
1: बाप रे,
0: कल मैंने देखी अजब हसीना। प्यार में उसके धड़के मेरा दिल चलता है सीना धक धक धक। पास वो आई बड़ी अदा से, बोली क्यों हो खफा खफा से।
1: हाय मर जाऊं,
0: हम भी थे एक नजर के प्यासे।
1: क्यों नहीं,
0: दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया आराम।

0: क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं,
1: बाय बाय।
0: अरे सुनो तो, मोना सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: पहले जरा आप मुस्कुराई, पहले जरा आप मुस्कुराई,
1: पहले जरा आप मुस्कुराई।

0: आदत हो वाली मेम साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला ला ला ला ला बस बस बस बस बस बस बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया। म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए। रेडी 1 2 3 4 ला।